0: लाइका गोल्ड।
1: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, नवनाथ सेंटर हेज UB3 1AR में। भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ। Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: सारी रात Bollywood classics का साथ. सिर्फ Laika Gold पर.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल at all protected.
2: Packed for the trip? Gifts? Passport?
3: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
3: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

मन कोय। मन्ने शुद्ध होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोहन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जा।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहन जाई।

नाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बोल लख होवै लख होवै लखवीस लख।

जोर, जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: Good morning, this is Cameron McGarvey here. First of all, to Dollis Hill and Duddon Hill Lane. Still got very slow traffic near the Cooper Road, that's through the roadworks there. Sharon Hall Street at Walthamstow, still got the fire services on the scene. That's closed in both directions between Burns Close and Church Lane. And the M25 anti-clockwise still very slow at Junction 1A, the Dartford Tunnel. Public transport, Greater Anglia, we've got no service between Stratford and Leabridge and delays between Liverpool Street and Shenfield. That's due to engineering works. And to the District and Piccadilly lines, we've got trains not stopping at Barnes Court, and that's down to engineering works as well. That's your traffic and travel.
2: Take summer by storm with Kia. Introducing the new Kia Sportage Storm, a unique limited edition of the UK's favourite family SUV. Test drive the award-winning Kia Sportage today and order yours by the 31st of August to get 5.9% APR representative and up to £3,000 PCP finance deposit contribution. Search Kia Take Summer by Storm.
3: Kia. Movement that inspires.
2: T's and C's apply. Kia Finance. To verify, visit kia.com/uk/favorite.
4: Ye hai Like a Gold. 10:35 a.m.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
6: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. Backstage siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of bhajan jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek sham soulful music, devotion aur energy ke naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है.
11: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में.
10: सच?
11: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह.
12: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला, 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंस हिल, इलफोर्ड, IG2-6HA. कॉल करें 07555-506-015. बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन Ilford.
13: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
14: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
13: Southall Travel.
14: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
13: Southall Travel can take you there.
15: Southall Travel, at all protected.
16: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: बाबुलाजा होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। जीवन की एक और उज्जवल सुबह, मनोरंजन का एक और अंक, रवि शर्मा के साथ आप श्रोताओं की एक और मुलाकात। दोपहर बाद एक बजे तक हम चलेंगे साथ साथ। सोमवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 13 तारीख और वक्त हो गया है भाई कार्यक्रम को शुरू करने का। तैयार हैं आप?
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: Travel Hub.
3: At all protected.
2: Leica. Reminisce those classics on Leica Gold.
1: सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करें, नजर उठा के वो देखें तो हम सलाम करें।

0: बहुत अच्छा लगता है भाई, संगीत किसको अच्छा नहीं लगता। गीत बहुत प्यारे होते हैं, बड़े न्यारे होते हैं, हमारे और तुम्हारे होते हैं जीवन का अंश। वल्ल, दो गीत बैक टू बैक हमने परोस दिए आपको। ये गीत जो अभी आप सुन रहे हैं अजनबी फिल्म से है, लता जी और किशोर दा ने स्वर दिया। और जो पहला गीत था भाई प्रोग्राम का, मेरे महबूब तुझे सलाम, दैट वाज टेकन फ्रॉम द बगावत फिल्म। गाने वाली आवाजें रफी साहब और आशा जी की थीं। भाई अब आपको हम पाउंड का रेट बताने वाले हैं, याद दिला दूं आपको, दिस इज मनोरंजन प्रोग्राम विद रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं कि भाई अपने कोई परिवार को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को अगर आप पैसे भिजवाना चाह रहे हैं भारत में, तो आज का रेट नोट कीजिए। फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 127.75 रुपीज, 127 रुपए और 75 पैसे। और दैट यू कैन सेंड बाय विजिटिंग द ब्रांच और ऑनलाइन यू कैन सेंड और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट SBI UK.State Bank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: फैंटास्टिक भाई, जो वर्ल्ड कप है फीफा का, महाकुंभ फुटबॉल का, वो चल रहा है और अब वो अपने, यूं समझिए कि अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। उसके क्वार्टर फाइनल मुकाबले हो चुके हैं, सेमीफाइनल के लिए पहला मैच जो है वो कल खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दूं कि आज का दिन फीफा के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है बहनों भाइयों, क्योंकि सुना है कि 1930 में पहला वर्ल्ड कप आज ही के दिन भाई उद्घाटित हुआ था, उसका उद्घाटन, उसकी ओपनिंग हुई थी, खेला गया था। तो साहब आज तो ख़ास दिन है फीफा के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में 19 जुलाई को होगा फाइनल मुकाबला, और उससे पहले तीसरे स्थान के लिए एक मुकाबला होगा, और भाई सेमीफाइनल के जो है वो दो मुकाबले खेले जाएंगे। तो फाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है देखते हैं, और एक एक मैच का भाई स्कोर और भाई रिजल्ट जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बट डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन Leica।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Looking to boost your career or just starting out? As the experts in online learning, the Open University has over 200 qualifications to choose from, like business.

0: feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
3: लाइक रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के विशेष समाचार सुनिए। शुरुआत करते हैं भाई विंबलडन से। यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीत लिया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का ये अवार्ड जीता। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। सिनर ने लंदन के सेंटर कोर्ट पर खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से शिकस्त दी। यानिक सिनर का ये लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवा ग्रैंड स्लैम खिताब है। सिनर इससे पहले 2025 में विंबलडन चैंपियन रह चुके हैं। दूसरी ओर चीन की गो हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लाडे नोविच की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। इस जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में कनाडाई ब्राजीलियाई जोड़ी ग्रेबियला डब्रोब्स्की और लुइसा स्टेफानी को सीधे सेट्स में 6-3, 7-5 से हराया। खेलों की बात कर रहे हैं तो भाई यत्सिका भाटिया का भी जिक्र करें, जिसने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वो काम कर दिखाया जो आज तक कोई और महिला खिलाड़ी नहीं कर पाई थी। पहला शतक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भाई टेस्ट मैच में उन्होंने लगाया और ये एक रिकॉर्ड बन गया, जबकि विरोधी यानी मुकाबले में खेल रही दूसरी टीम यानी इंग्लैंड की टीम की खिलाड़ियों ने भी तालियां बजाकर उनका धन्यवाद किया, उनका हौसला बढ़ाया। तो यश्का भाटिया भाई जो है पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में शतक लगाया है, पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। राइट, खेलों की दुनिया से निकलकर अब आते हैं भाई हकीकत की दुनिया में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के चातुचक इलाके में स्थित एक बार में संडे और सोमवार की दरमियानी रात बार में भीषण आग लग गई, 27 लोगों की जान ले गई। इस हादसे में 60 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। कई लोगों के अब भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को संडे की रात के बाद आधी रात के बाद आग लगने की इन्फॉर्मेशन मिली। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि लोग आग और धुएं से बचने के लिए बार के मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग जान बचाकर भागते दिखाई दिए। वीडियो में कुछ लोग चीखते हुए और गिरते हुए भी नजर आ रहे थे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बताया है कि आग लगने के समय में बार में प्रस्तुति दे रहे एक संगीतकार से भी पूछताछ की गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि लोग बाहर निकलने की बजाय इमारत के पीछे की ओर चले गए और टॉयलेट्स में छिप गए। उन्होंने कहा कि अधिकांश शव वहीं से बरामद किए गए हैं। भाई हम जब विंबलडन का जिक्र कर रहे थे ये बताना भूल गए आपको कि विंबलडन में एक खास पर्सनैलिटी पहुंची हुई थी, वहां लोग उन्हें भी देख रहे थे, खेल छोड़ के उन्हें देख रहे थे। कौन थे वो? वैभव सूर्यवंशी। कहते हैं मैं टेनिस का बहुत बड़ा फैन हूं और इसलिए मैं फाइनल देखने आया हूं। भाई वैभव सूर्यवंशी की मौजूदगी थी विंबलडन में फाइनल मुकाबले को देखने के लिए। अन्य खबरों में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों को एक वार्निंग दी है। ईरान ने खाड़ी मुल्कों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई में अमेरिका को सहयोग दिया या अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया तो उन्हें निशाना बना जाएगा, उन पर अटैक किए जाएंगे। अमेरिका की ओर से हुए ताजा अटैक्स के बाद ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज ये चेतावनी जारी की है। भारत से आने वाली खबरों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को मार्टर्स डे से पहले घर में नजरबंद किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद किया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि हमें मार्टर्स डे से एक दिन पहले कई कारणों से नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की ओर से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। वियतनाम के फूक वॉक आइलैंड के पास एक स्पीड बोट हादसे के बाद पुलिस ने कैप्टन गुयेन होंग हाई को गिरफ्तार कर लिया है। कैप्टन पर समुद्री और जल मार्ग यानी पानी के रास्ते की सिक्योरिटी नियमों के उल्लंघन का इल्जाम है और उनके खिलाफ आपराधिक जांच भी शुरू कर दी गई है। वियतनाम की डिफेंस मिनिस्ट्री के अखबार पीपल्स आर्मी न्यूज़पेपर ने कैप्टन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, कंफर्म किया है। वियतनाम इस नाव हादसे में 15 भारतीयों की मौत के बाद बोट का कैप्टन अरेस्ट हुआ है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। IRGC ने क्लेम किया कि संडे और सोमवार की सुबह आज अमेरिकी अटैक्स के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। हॉलीवुड से एक खबर आई है। हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सैम नील का आज 78 बरस की उम्र में निधन हो गया है। फिल्म जुरासिक पार्क में निभाए गए किरदार के लिए वो दुनिया भर में मशहूर हुए थे। सैम नील के परिवार ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी मृत्यु, उनका निधन अचानक और अप्रत्याशित रूप से हुआ है। उन्होंने सिडनी में अपने परिवार के बीच आखिरी सांस ली। 78 साल के थे। भारत के आने वाली खबरों में बिहार के पटना की एक अदालत ने आज शिक्षक टीचर फैसल खान उर्फ खान सर को कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। फैसल खान के वकील ने बताया है कि कोचिंग संस्थान के 3 और कर्मचारियों को भी एडवांस बेल दे दी गई है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच टीम को अब तक हुई जांच की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जाम माल्या और बागची जी और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। और एक बार फिर बता दें, ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिकी दबाव के कारण ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर ओमान के साथ सहमति तक नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को मस्कट में हुई बातचीत में केवल हॉर्मुज, विशेष रूप से समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 5 पर, आर्टिकल 5 पर ध्यान सेंट्रलाइज किया गया। हमें खेद है कि अमेरिका ने ओमान पर डाले जा रहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर के कारण मस्कट में कोई प्रगति नहीं हो सकी, बात आगे नहीं बढ़ सकी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: The one and only one, Ravi Sharma, on your number one radio.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
4: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
6: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: जिन दिनों भाई मेरा नाम जोकर जैसी बड़े बैनर की फिल्में जो है वो फ्लॉप हो रही थी, उन दिनों में जॉनी मेरा नाम फिल्म ने आकर के तहलका मचा दिया था। उसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर माफ कीजिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में देवानंद छा गए थे। इस फिल्म में भाई बहुत अच्छा कथानक था और बहुत अच्छे गाने सुपरहिट।
1: लाइका गोल्ड करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: लेट मी टेल यू द रेट्स भाई, LM5 वाले जो रेट्स दे रहे हैं एक पाउंड के बदले इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 128.08 रुपीस, पाकिस्तानी 373.49, श्रीलंकन 450.13, बांग्लादेशी टकास 165.45 और अफगान अफगानी 86.37।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is trading at the rate of 97.84 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो, के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
7: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में, इंडियाज फेमस छोले भटूरे, अ मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड, गैंसू, इल्फर्ड, IG2-6HA, बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
9: She can't hear you, but danger always hears her coming.
10: Sab dar bhag jaye.
9: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas on the 17th of July. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
11: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208 951 0111.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, लेस्टर में और ऑनलाइन दुनिया भर में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत कहना चाहता हूं मैं कार्यक्रम में। यहां ब्रिटेन में इस समय घड़ियां समय बता रही हैं 11:04। वक्त हो गया है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। मुझे बहुत सारे लोग भाई बाहर जब मिलते हैं, कई लोग आवाज से ही पहचान लेते हैं, पूछते हैं क्या आप रवि शर्मा हैं? मैं कहता हूं हाँ। कहती है आप वही रवि शर्मा हैं चिंतन वाले? तो जानकर गर्व होता है भाई, लोग चिंतन के श्रोता बहुत हैं। कहते हैं हम चिंतन सुनते हैं। ऐसी ही एक भाई श्रोता हमारी नीलम जी मिली, कहती है कभी मिस नहीं करती हूं मैं चिंतन। तो अब ऐसा कीजिएगा, मुलाकात हो गई है तो मंडे को हमारा चिंतन प्रसारित कीजिएगा। नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपकी ओर से अविनाश वर्मा और रक्षा वर्मा को बहुत बहुत बधाई दी जा रही है। बहुत सारे लोगों की तरफ से भाई, उनके रिश्तेदारों की ओर से, जिन्होंने अपने पोत्र का आर्यन वर्मा का जन्मोत्सव मनाया, बड़ी धूमधाम से, श्रद्धा से, निष्ठा से, पूजा पाठ और यज्ञ हवन के द्वारा, और उसके बाद सेलिब्रेशन, केक कटिंग, म्यूजिक, डांस, एवरीथिंग। सो हमारी ओर से भी आर्यन वर्मा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रक्षा जी को और अविनाश वर्मा को भी बहुत बहुत मुबारकें। और बहनों भाइयों, अब नीलम जी का आज का चिंतन सुनिए, थॉट फॉर द डे, आज का विचार चिंतन।

आज की चिंतन में हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो है कि भाई क्या स्कूल कॉलेज की एजुकेशन बहुत जरूरी है? क्या एजुकेशन जो हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, जो माहौल में है, जो व्यवहार में है, जो पग पग पर हमें अनुभव मिलते हैं, उनमें तालीम नहीं है क्या? है, बहुत है। बस आंखें कान खुले रखने की जरूरत है और विचार करने को ही चिंतन कहते हैं। बहनों भाइयों, सीखने को मिलता है हर कहीं से, उठा लो, जुटा लो, लपेट लो। ज्ञान पग पग पर बिखरा पड़ा है। आज जिस व्यक्ति की चर्चा करवा रही नीलम जी, कहती हैं इलन मस्क का नाम तो सबने सुना है। इलन मस्क भाई कहते हैं कि दुनिया के सबसे रिच व्यक्ति हैं इस समय। कितना पढ़े होंगे भला भाई, साइंटिफिक प्रॉपर्टीज उनकी बहुत हैं, उपलब्धियां हैं, लेकिन वो साइंस की कोई डिग्री नहीं रखते। इनफैक्ट बचपन में उनका शौक था रॉकेट उड़ाने का और वो किसी तरह से मेहनत जुटा करके नासा तक पहुंचे तो नासा वालों ने कहा एजुकेशन के नाम पर तुम्हारे पास कोई साइंटिफिक डिग्री नहीं है, ही इज ए नॉन साइंस पर्सन, भगा दिया। लेकिन एलन मस्क ने घर पर ही किताबें पढ़ करके भाई साइंस की तालीम जुटानी शुरू की। सफलता भाग्य से नहीं, मेहनत से मिलती है, ये साबित कर दिया उन्होंने। कहते हैं कि 2026 के मध्य तक, यानी इस समय तक, एलन मुद्रा की जो संपत्ति है वो ट्रिलियंस में है। ही इज द फर्स्ट ट्रिलियनेयर। हमने लखपति, करोड़पति, अरबपति तो सुने हैं, लेकिन ही इज खरबपति। लेकिन ये भी बता दें कि भाई ज्यादातर संपत्ति नकद नहीं है बल्कि कंपनियों में हिस्सेदारी के रूप में है। टेस्ला है उनकी, स्पेस एक्स है, एक्स ए आई एक्स, और इन कंपनियों के शेयर के भाई मूल्यांकन में बदलाव आता जाता रहता है, लेकिन ही स्टिल द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। वे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट और न्यूरोटेक्नोलॉजी जैसे कई फील्ड्स में एक्टिव हैं। अब बहुत छोटी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी और क्या आप विश्वास करेंगे 12 साल की उम्र में उन्होंने एक ब्लास्टर नामक कंप्यूटर गेम बनाकर बेच दिया था। बाद में वो कनाडा और फिर अमेरिका चले गए। और साहब आपको बता दें कि अध्ययन जो है उन्होंने घर पे किया विज्ञान का, किताबें पढ़ पढ़ के, प्रयोग कर करके, छोटे मोटे जोड़ तोड़ बिठा करके वो साइंस के क्षेत्र में इस तरह से उपलब्धियां लेते रहे, अचीवमेंट्स जुटाते रहे। लेकिन उन्होंने कोई सिस्टमैटिक डिग्री नहीं ली किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से। कहा ना, विद्या तो कदम कदम पर बिखरी पड़ी है। बस आंखें कान बुद्धि का जो भाई द्वार है वो खुला रहना चाहिए, ज्ञान जुटाओ और फिर उसे फैलाओ। एलन मस्क का ये सपना है कि वो जन जन तक, कण कण तक ये उपलब्धियां पहुंचाएं और एक दिन वो अपना स्पेसयान मंगल ग्रह और चांद तक पहुंचाएं और फिर लोगों को उसमें भाई वो आने जाने की सुविधा दे सकें। देखते हैं साहब, विज्ञान बहुत कुछ कर सकता है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ज्ञान केवल स्कूल कॉलेजेस में ही नहीं मिलता है, आपके घर पर भी, आपके आस पड़ोस में भी, आपके परिवार में भी। आज का गीत जो चिंतन के साथ हम सुनवा रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के नाम करना चाह रहे हैं जिसे कॉम्प्लेक्स हो गया कि मैं पढ़ नहीं पाया, अनपढ़ रह गया। मैंने अपने परिवार को बहुत सारा दिया, भाइयों को पढ़ाया, बच्चों को भी पढ़ाया, पर मैं खुद स्कूल कॉलेज नहीं जा सका। तब उनकी पत्नी ने कहा, आप पढ़े हुए नहीं हैं, कढ़े हुए हैं, अनुभवी हैं, आपके पास जितना ज्ञान है, आपके पास जितनी बुद्धिमता है,
वो तो आपके परिवार में किसी के पास नहीं है। आपको जिम्मेदारियों का एहसास है और यही सबसे बड़ा ज्ञान तो आपके पास है। ईश्वर ने भी तो कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं ज्वाइन किया था, बचपन से ही ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिखा करके उन्होंने साबित किया कि ज्ञान आपके भीतर है।

विद्या का अभिमान नहीं है, नॉलेज का अभिमान नहीं है, पर यह मत समझिए कि आपको ज्ञान नहीं है। ईश्वर ने हर मस्तिष्क में ज्ञान भर के भेजा है, बस उसे बाहर आने दीजिए। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें नीलम जी ने भिजवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, और बहुत सारी शुभकामनाएं वर्मा परिवार को, जिनके भाई बहुत सारे चिंतन प्रेमियों से भेंट हुई। चिंतन के साथ जो गीत आपने सुना, दैट वाज पिक्चराइज्ड ऑन नूतन, एक तुम दूजे भगवान, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म मेहरबान। सुनील दत्त और नूतन की फिल्म थी, और उसमें शायद सुनील दत्त को भी यही कॉम्प्लेक्स था कि वो अनपढ़ रह गए, लेकिन जो कारनामे उन्होंने फिल्म में दिखाए भाई, उससे साबित होता है। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज अटेंड नहीं की, लेकिन सूझबूझ में, नॉलेज में, निर्णय लेने में, उनके ज्ञान का भाई कोई क्या कहें आपको मुकाबला नहीं। याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे के खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल होता है। भाई ये जो गूंज मेरे कानों में आ रही, आप तक भी पहुंचती होगी, मैं क्षमा चाहता हूं, और मुझे बहुत जल्दी ये हेडफोन्स बदलने होंगे, क्योंकि मैं पूरी तरह से इनको कोशिश कर रहा हूं कि इनकी गूंज ना पहुंचे, और पहुंचते तो क्षमा कीजिएगा। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।

0: Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: State Bank of India UK giving 127.75 रुपीस मैक्सिमम फॉर वन पाउंड, और कहते हैं कि भाई आप जो है अपनों को पैसे भिजवाने के लिए हमारी ब्रांच में आ सकते हैं, और यू कैन डू इट ऑनलाइन या फिर यूज योर SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: याद दिला दें भाई, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले जो हैं अब अपने समापन की ओर बढ़ रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब सेमीफाइनल मुकाबले होंगे, दो मैच खेले जाएंगे और फिर जो टीम जीतेंगी वो फाइनल में भिड़ेंगी। 19 तारीख को फाइनल होना है, लेकिन आज का दिन बता दूं आपको कि 1930 में उरुग्वे में पहले फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन हुआ था, आज से शुरुआत हुई थी, इसलिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। भूलिएगा नहीं, इंग्लैंड पहुंचा हुआ है भाई सेमीफाइनल में, अर्जेंटीना से उसकी भिड़ंत होगी, हमें इंतज़ार है उस खेल का, देखते हैं भाई क्या होता है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आप तक रिजल्ट और खेल का हाल जो है पहुँचाते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जो फीफा की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, उनसे आप निशुल्क यानी फ्री मुफ्त 15 मिनट की लीगल एडवाइस कानूनी मशवरा ले सकते हैं। अगर आप लाइका मेंशन करें उनसे बात करते हुए, तो रैक लॉ विल गिव यू 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस व्हेन यू मेंशन लाइका। एंड देयर फोन नंबर इज कमिंग, नोट कर लीजिए।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: यहाँ जिंदगी वहाँ सैको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स.
1: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
2: sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get £600 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
3: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
4: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है.
5: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैल्सिल इलफोर्ड में.
4: सच?
5: बिल्कुल. देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह.
6: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैल्सिल इलफोर्ड, IG2 6HA. कॉल करें 07555-506-015. बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन.
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344. 24 hour line.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.

0: Leica Extra podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
1: Humse sasta kahin nahi mil sakta.
2: TravelHub.
1: At all protected.
0: Leica. The sun is out. And so are the summer hits on Leica Gold.
3: आइए आपकी मुलाकात सोनू निगम से करवाते हैं। बहुत दिनों के इनकी आवाज सुने। ये तो अलका याग्निक है, माँ को याद कर रही है। सोनू कम ऑन यार,

मधुर आवाज सुनवाते हैं आपको मोहम्मद अजीज के साथ, सुनिए एस जानकी को। एस जानकी भाई, ये एक ऐसी आवाज जो खामोश हो गई है, लेकिन साहब गायक कलाकारों की आवाज कभी खामोश नहीं होती, बरसों तक युगों तक गूंजती है संगीत प्रेमियों के दिलों में।

23 अप्रैल 1938 में उनका जन्म हुआ मैड्रास में। उस समय मैड्रास कहते थे तमिलनाडु को, चेन्नई को। अभी तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है भाई। ये जो उनका जन्म स्थल है पल्ला पाठिया, उस समय मद्रास में था यानी तमिलनाडु में। और शनिवार 11 जुलाई को उनका निधन हो गया 88 बरस की आयु में मैसूर में, कर्नाटक में। सरस्वती पुत्री एस जानकी इज नो मोर पर वॉयस इज देयर। गीत है, संगीत है, अमर है, स्वर ईश्वर है।

0: ये गीत वही श्रद्धांजलि स्वरूप एस जानकी महान गायिका को समर्पित। वीकेंड पर उनका निधन हो गया, लेकिन संगीत प्रेमी उन्हें अपने दिलों में याद रखेंगे और याद रखेंगे उन गीतों को।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a Gold.
5: Like a Extra podcast update.
0: और याद दिला दें आपको लाइक एक्स्ट्रा पर भाई हमारा नया एपिसोड आ गया है। ईस्ट अफ्रीकन एशियंस, वो लोग भाई जिनके संघर्ष की कहानी एक प्रेरणा बन सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। अपनी जड़ों से उखड़े और उसके बाद भी जड़ों से जुड़े रहे और जहां गए अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा को साथ लेकर के भाई एक देश से दूसरे देश और वहां से भी फिर कोई यूरोप तो कोई वापस भारत लौटे, उनके संघर्ष की गाथा को भाई ये हमारा एपिसोड प्रदर्शित करता है। और उपलब्ध है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। जरूर देखिएगा ईस्ट अफ्रीकन एशियंस।
5: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
6: ये है
7: लाइका गोल्ड।
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
9: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: विजिट travelhubworld.com।
10: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
11: 25? Seriously?
10: Sounds like Ojo time.
11: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
10: Sorry about the wait. How can I help?
11: You can help me celebrate. I won.
12: Feel the fun. Play Ojo.
13: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gambler aware. T's and C's apply.
14: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
15: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
0: London Valley. तो ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
16: आपके सामने एक रेड बटन है,
17: दबा दिया।
16: नहीं दबाना था।
18: The madness is back, धमाल 4।
19: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
18: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
20: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
18: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
21: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता।
22: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kgs, यानी कि 4 टाइम्स 5 kg या 2 टाइम्स 10 kg या 1 टाइम्स 20 kg। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
23: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड, द लेक डिस्ट्रिक्ट, डेवन एंड कॉर्नवॉल, टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली एंड द नेदरलैंड्स, स्टार्टो takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
5: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold,
4: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइका गोल्ड.com पे।

जी तो हम भी नहीं सके, पर उन्हें कोई कैसे बताए कि तमन्नाएं सब नेक उसी के लिए हैं, मेरी सारी खुशियां वफाएं उसी के लिए हैं, अजबर उसे रास्ते आने वाले मगर उसको जाने का रास्ता भुला दे।

महेंद्र कपूर की सदाबहार आवाज हमें ले आई है 12 बजे की खबरों तक। खबरें सुनेंगे आप और भाई, खबरों में वार्निंग दी जा रही है हीट वेव, ये क्लाइमेट चेंज का असर जो है बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। कहते हैं कि हीट वेव के कारण जन्मी बीमारियों से इंग्लैंड और वेल्स में 2700 से ज्यादा मौतें हुई हैं जो हीट वेव के कारण बीमारियां पैदा होती।

0: चल चल चल निकल निकल निकल चल मेरे भाई, तेरे पांव तोड़ता हूँ, तेरा सर फोड़ता हूँ, तेरा भाई जो लड़ाई झगड़ा करना करो, लेकिन बेचारी बोतल का क्या कसूर है? बोतल क्यों तोड़ते हो भाई? ला दे ये बोतल, अभी तोड़ता हूँ, अभी फोड़ता हूँ। देखो भाई, बात ये नुकसान क्यों करना है ये बताओ, आपने नहीं पीनी है, इधर पहुंचा दो ये भाई। ए, ए, क्या क्या के बोतल बोतल बेकसूर है। लीजिए साहब, नशीले गीत सुनवाते हुए प्रोग्राम के तीसरे दौर का आगाज हो चुका है और अब एक बार फिर सुन लीजिए SBI का इस समय का रेट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK इस समय जो रेट दे रहे हैं, नोट कीजिए, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127.75 रुपीज एंड दैट इज द मैक्सिमम। एंड हाउ यू कैन बाई सेंड टू योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स इन इंडिया, यू कैन गो टू द ब्रांच और ऑनलाइन यू कैन डू इट, और या फिर उनका जो SBI योनो मोबाइल ऐप है उसके इस्तेमाल से यू कैन सेंड मनी टू इंडिया। एंड डोंट फॉरगेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
6: Feel the fun. Play Ojo.
5: 18 plus, gamble aware. Sadko.

0: होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में। Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
3: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
4: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
3: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
4: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
3: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
4: Visit Kajal's Couture.
5: लंदन वालों, ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर furniture.co.uk पर जाएं।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02023963577. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: भाइयों बहनों, खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद, बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में। इंडियाज फेमस छोले भटूरे, अ मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड, गैंसू, इल्फर्ड, IG2-6HA, बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
9: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
10: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
11: और बहनों भाइयों, एक इंतजार के बाद इस सप्ताह के कलाकार घोषित किए गए हैं, महान संगीतकार रवि। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि उनके घर का नाम वचन है। भाई, वचन फिल्म के गीतों ने उन्हें इतना मशहूर कर दिया था कि उन्होंने मुंबई में, वो जो सांता क्रूज में उनका घर है, तो वो घर जो है वचन कहलाता है। 1955 में ये फिल्म आई थी, पहली फिल्म थी जिसने भाई रवि साहब को संगीतकारों की श्रेणी में चोटी पर पहुंचा दिया था। हालांकि उनके टैलेंट को तो पहचाना था हेमंत कुमार साहब ने, और हेमंत कुमार को उनकी इसलिए भी ज़रूरत थी कि कुछ उर्दू के लफ्ज़, वो बंगाली थे तो उर्दू के शब्दों को गीतों में पिरोने में उन्हें थोड़ी दिक्कत आती थी, तो रवि साहब हेल्प करते थे। और ये तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि नागिन फिल्म का वो गीत तन डोले मेरा मन डोले, उसमें जो भाई बीन और हारमोनियम का संयोग है, वो कल्याण जी भाई शाह और संगीतकार रवि, ये दोनों उन दिनों हेमंत कुमार के असिस्टेंट थे। इन्होंने भाई उस धुन को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भाई पार करके पूरे वर्ल्ड में फेमस किया था। म्यूजिक डायरेक्टर रवि, आप जानते हैं, मेरे पिता समान थे, मेरे घर पर आते थे, मुझे हर तीज त्यौहार पर संदेश भेज करके आशीर्वाद देते थे, बहुत करीब थे। और बहनों भाइयों, आपने भी उनके गीत सुने हैं, हर रोज़ कोई ना कोई गीत उनका प्रोग्राम में शामिल होता है। बाली भाई बहुत चर्चा करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर मौसीकी का सहारा ना होता तो हमें दुनिया में रहना गवारा ना होता।

0: और बहनों भाइयों, ऐसी ऐसी धुनें आप सुनेंगे इस सप्ताह में, क्योंकि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है म्यूजिक डायरेक्टर रवि। देखिए, 3 मार्च 1926 में उनका जन्म हुआ था और 7 मार्च 2012 में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और हर 3 मार्च को मैं उन्हें फ़ोन करता था, हैप्पी बर्थडे कहता था, बहुत सारे आशीर्वाद लेता था। लेकिन 2012 में जब उन्हें फ़ोन किया तो छाया बहन जी से बात हुई। छाया उनकी बेटी का नाम है और एक वीना है उनकी बेटी और एक बेटा है अजय, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे अजय के बारे में, क्योंकि उन्होंने वर्षा उसगांवकर से, जो फिल्म अभिनेत्री एक्ट्रेस हैं, उनसे शादी की है और वो भी वचन में ही रहते हैं घर में उसमें। तो छाया ने कहा कि पापा घर पे नहीं है भैया, वो हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हुआ? कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है कहती हैं वो। तो मैंने कहा नहीं है, मैं फिर करूँगा। तो 3 मार्च को किया था, उसके बाद फिर मैंने 7 मार्च को किया फ़ोन, तो वो सुबह उठते हुए उन्होंने बताया कि पापा तो चले गए। संगीतकार रवि इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी धुनें छोड़कर, और भाई संगीत का एक यूँ कहिए कि एक ऐसे मोड़ पर वो संगीत प्रेमियों को जैसे प्यासा एक जिज्ञासा भरे भाई माहौल में छोड़ गए हैं कि वो हम मिस करते हैं उन्हें। तो बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे इस सप्ताह में म्यूजिक डायरेक्टर रवि की बनाई धुनों पर। ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और अब अगला गीत, बढ़ते हैं आगे।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: और साहब, पता चला है कि आज मास्टर सलीम अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मास्टर सलीम भाई पंजाब की एक ऐसी आवाज है जो बहुत दूर दूर तक अपने रंग बिखरा रही है। सलाम सलाम सलीम साहब, सलाम।

0: और बहना भाई आपने महसूस किया होगा क्या कंट्रोल है सलीम का अपनी आवाज पर, जिस तरह से वो भाई मुर्गियां लेते हैं ना गीत में छा जाते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इस भाई पंजाबी गायक कलाकार को हम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। वैसे इन्होंने हिंदी के गीत भी गाए हैं, बहुत सारे गीत इनके छाए हैं। तो साहब आज जन्मदिन के मौके पर ये गीत किसने पहुंचाया आप तक?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और बहनों भाइयों अब इंतजार है हमें कोई खेलों की खबर कोई आने वाली है, इंतजार कर रहा हूं मैं, बस आने ही वाली है। बात यह है कि क्रिकेट मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड की महिलाओं के बीच। पुरुषों की टीम तो भाई बहुत बढ़िया नहीं खेल पाई इंग्लैंड के खिलाफ, हालांकि खिलाड़ी काफ़ी उसमें नए थे, लेकिन विमेन टीम जो है अच्छा रंग दिखा रही है। और टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान में इकलौता टेस्ट मैच भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत लिया है। एक तो भाई यस्तिका भाटिया का जो शतक, उनकी जो सेंचुरी है वो चर्चा में है, पहली सेंचुरी किसी विमेन खिलाड़ी के द्वारा। भाई पहला टेस्ट मैच दोनों का लॉर्ड्स के मैदान में, जो कि क्रिकेट का घर माना जाता है, क्रिकेट का तीर्थ स्थान माना जाता है, भाई वहां पर ये मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला, इकलौता टेस्ट मैच इंडियन विमेन ने 270 रनों से जीत लिया है। देखिए स्कोर बनाया, पहली इनिंग में 285 रन और दूसरी इनिंग में 341 रन 7 विकेट पर बना करके पारी डिक्लेयर कर दी। और इंग्लैंड की महिलाओं ने पहली इनिंग में 170 रन बनाए और दूसरी में 186 रन पर पूरी टीम अभी अभी आउट हो गई है। और भाई बधाई देते हैं हम भारतीय महिलाओं को, इसी तरह से रंग दिखाती रहें छाती रहें। आपको बताएं कि वो जो जय शाह है ना, बीसीसीआई के अध्यक्ष, अपना आईसीआईसीआई के भी वो जो क्या कहते हैं उसको, जो क्रिकेट काउंसिल है इंटरनेशनल आईसीसी, तो भाई वो जो है उसके भी अध्यक्ष जो है जय शाह हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि वो महिला क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और एक काम तो उन्होंने ये किया कि पुरुषों को जो करोड़ों में फीस दी जाती थी, महिलाओं को कम पे किया जाता था धन जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं और पुरुषों को बराबर पैसे मिलेंगे। तो भाई करोड़ों की बारिश होने लगी और भारतीय टीम की महिलाओं ने भी फिर हाथ दिखाने शुरू किए। और अब भाई पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत लिया। कांग्रेचुलेशंस टू देम। तो बहुत बहुत भाई बधाई के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
1: लाइका गोल्ड।
2: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
3: ये नशे की बात नहीं करना, नहीं नहीं, दारू की क्या तो बिल्कुल बात करना ही, छेड़ना ही नहीं बात, चर्चा नहीं करना। ए हाँ, दमशम लालो विष है कोई गल नहीं, पर ज्यादा नहीं, ए ज्यादा नहीं यार।

आशा जी दम लगाओ भी तो कह सकती थी, या दम मारो, ये मारपीट जरूरी है क्या? पंजाबी च ना ये नहीं कहते भी ताड़ियां बजाओ, वो कहते भाई ताड़ियां मारो, हर थाने भाई मारपीट कानू है।

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Southall Travel भाई याद दिला दें आपको कि वो आपको याद दिला रहे हैं कि The FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है Like a Gold
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com
3: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: Shri Jagannatha Society UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak. Navnath Center, He's UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laab zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
11: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
12: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
11: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
13: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocenter.org Assuming you want to get noticed.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
2: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
1: तेरा प्यार पाने के लिए कितना इंतजार किया वाह जी वाह क्या बात है क्या बात है और कौन लिख रहा है ये हितेश हितेश पटेल आज शाम को योर डिनर विल बी इन डॉग बता रहा हूं कहते हैं तेरा प्यार पाने के लिए कितना इंतजार किया और तेरा इंतजार करते करते जाने कितनियों को प्यार किया आज बात नहीं करेंगी आपकी पत्नी आपसे

अर्जुन जी आपकी मुबारकबाद भिजवा देते हैं इंडियन टीम को। थैंक यू। और भाई प्रदीप सोलंकी, थैंक यू वेरी मच। बीकू भाई, ये गीत आपके नाम कर देते हैं, आप केनिया में सुनते हैं हमारे प्रोग्राम, कहते हैं आजकल नहीं सुन पा रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ आपके कार्यक्रम को, कोई कारण है, हम मिसिंग।

0: रूठो को मनाएंगे भाई, कब तक रूठे रहेंगे। अंसा बोरा जी थैंक यू वेरी मच, आनंद तोमर, विजय मॉरिशस वाले और भाई अहिर यादव जी आपका भी धन्यवाद, नीला चौधरी जी, सत्यनारायण सैनी भारत में सुन रहे हैं, जुड़े हैं हमारे साथ लगातार, जगदीश रानी स्लो वाली, रंजन वत्सला जी धन्यवाद, सुनीता शर्मा, रागिनी पम्मी स्लो वाले, मान जाएंगे।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, मोर फ्लेवर्स मोर कन्वीनियंस मोर यम, ग्रैब योर कोको बोल टुडे।
2: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और आपको बता दें भाई, LemFi के रेट से एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.17 रुपीस, पाकिस्तानी 372.51, श्रीलंकन रुपए 450.21, बांग्लादेशी टकास 165.2 और अफगान अफगानी 86.4.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is sold at the rate of 97.62 pounds per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: Hey, gali nahi. गाली गाय को देता भाई।
4: ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो,
0: देखा
4: ये बूट मेरा देखो,
0: देखा।

0: फकीरे वहाँ फकीरे सूट पहन कर कैसा सूदे फांदे वहाँ फकीरे वहाँ फकीरे सूट पहन कर कैसा सूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अरे क्या जानो हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया साला मैं तो साहब बन गया
1: साला मैं तो साहब बन गया भाई। बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो गाली दे रहा है देखो रेडियो पे यार क्या सुनवा रहे हो हमें भाई। साला कोई गाली नहीं है साला है साली नहीं है और साली भी गाली नहीं है क्योंकि ये तो एक रिश्ता है हाँ। और कई लोग तो वही साला शब्द इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बात बात में सेंटेंस में हर सेंटेंस में साला घुस जाता है भाई। साला पत्नी का भाई रिश्ता है एक लेकिन कुछ लोग मैंने देखा एक भाई बात बता रहे थे अगर यार की जैसा मैं जा रहा सी ते मैं सारा कल्ला मेरा दिल ना लगे ते अते रस्ते च मेरा एक सारा फ्रेंड मिल गया अब असी दोवे डिसाइड किया कि असी सारे निकल पे वो भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट करे तो वो साड़ी स्टार्ट ना हो तो बाद भाई एक बंदा जा रहा सी मैं उन्हें क्या भाई वो साड़िया थोड़ा धक्का ला दे भाई तो उस बंदे ने भाई वो साड़ा धक्का लाने पर लपया और भाई फिर मोटरसाइकिल साड़ी स्टार्ट हो गई भाई फिर तो रुके ना भाई भजी जावे सामने तो साड़ा एक ट्रक आ रहा सी भाई साड़े ड्राइवर ने वेख्या नहीं और तो बाद भाई मेरी मोटरसाइकिल वो साड़े ने धक्का मारा मोटरसाइकिल साड़ी वो जाके डिगी खड्डे च जा पाई भाई मेरे के कोई सारा गड्डी वाला आ रहा सीगा सारू दोयां नु चक के भाई वो हॉस्पिटल ले गया उत्ते सारा डॉक्टर नहीं सीगा ओ यार उस दिन तो वो सारा दिन बड़ा खराब सीगा दसो पता कितने बार हर बात में वो इस्तेमाल करते साला ये तो साहब बन गया याद रखिए सारा एक रिश्तेदारी है एक रिश्ता है गाली नहीं है
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
2: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 pounds.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट एक शाम सोलफुल म्यूजिक डिवोशन और एनर्जी के नाम टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: She can't hear you, but danger always hears her coming.
7: Sab dar bhag jaye.
6: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas on the 17th of July. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
8: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as DLC. Dutch. Look. Check. Dutch your breasts. Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
10: Four beers, please, garçon!
9: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
7: इल्फर्ड तैयार हो जाइए वेंसडे 15 जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला इल्फर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका। साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ। बीकानेर वाला 513519 ग्रैंड बुक रोड गेंटसिल इल्फर्ड IG2 6HA बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद।
10: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
11: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit SkylordCruise.com.

I know. You loved both the songs and you were singing along with them. Yes, these songs were actually written by Prakash Mehra. But the man was so talented. He also produced and directed films. He was, आपको मैं जब भी बोलता हूँ नासिर हुसैन या मैं कहूँगा मनमोहन देसाई, तो आप इमीजिएटली बोलेंगे यस द पायनियर्स ऑफ मसाला फिल्म्स, जैसे नासिर हुसैन की यादों की बारात और दूसरी फिल्में ऑफ कोर्स द रोमांटिक फिल्म कयामत से कयामत तक। एंड मनमोहन देसाई की बात करूँ मैं तो अमर अकबर एंथनी, नसीब, कूली जैसी फिल्में, पायनियर्स ऑफ मसाला फिल्म्स। वैसे ही प्रकाश मेहरा वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मसाला फिल्म्स। अब मैं जो

0: फिल्म में बताऊंगा तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि यस दोज वर दी मसाला फिल्म्स। उन्होंने 27 फिल्में की थी, 27 फिल्मों में अलग अलग तरीके से की थी। उन्होंने प्रोड्यूस की थी 17 फिल्में आउट ऑफ द 27 एंड ही डायरेक्टेड 22 फिल्म्स आउट ऑफ द 27 फिल्म्स। ही वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर वन फिल्म एंड अ प्रोडक्शन कंट्रोलर इन वन फिल्म। अब आज उनकी 87th बर्थ एनिवर्सरी है एंड एक फिल्म में ही जस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द स्क्रिप्ट बिकॉज ही एंटर्ड द इंडस्ट्री एज अ प्रोडक्शन कंट्रोलर एंड अ लिरिक राइटर। द स्टोरी बिगिंस विद द लेट 1950s। तब प्रकाश मेहरा बीइंग अ प्रोडक्शन कंट्रोलर इन द फिल्म प्रोफेसर, याद है ना शम्मी कपूर जी जिसमें थे, 1962 की फिल्म। द प्रोड्यूसर वॉज एफ सी मेहरा एंड द डायरेक्टर वॉज लेख टंडन एंड प्रोडक्शन कंट्रोलर प्रकाश मेहरा। वहाँ से शुरुआत की इन्होंने एंड 1965 में ही एक्चुअली वॉज द असिस्टेंट डायरेक्टर इन अ फिल्म कॉल्ड पूर्णिमा। यस, इन 1968 एट द एज ऑफ 29, अब 30 साल के भी नहीं हुए थे, इन 1968 ही डायरेक्टेड शशि कपूर इन हसीना मान जाएगी। उसमें से 3 गाने भी लिखे थे इन्होंने, इन विच शशि कपूर एक्चुअली प्लेड अ डबल रोल। नाउ इमेजिन अ डेब्यू फिल्म फॉर डायरेक्शन जिसमें शशि कपूर डबल रोल कर रहे हैं एंड फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए, तो नेचुरली इनको और फिल्में भी मिलेगी। 1973 में प्रकाश मेहरा जी वॉज 34 ईयर्स ओल्ड एंड ही फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड एंड ऑफकोर्स डायरेक्शन तो इन्होंने की ही थी जो हसीना मान जाएगी, इसमें भी डायरेक्शन उन्होंने की, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रोड्यूस भी की एंड दैट वॉज द फिल्म विच लॉन्च्ड अमिताभ बच्चन्स करियर। फिल्म थी जंजीर 1973 की, द हिट विद अमिताभ बच्चन विच स्टार्टेड अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, सक्सेसफुल कोलैबोरेशन बोलूं तो ठीक रहेगा, ऑफ 7 मोर फिल्म्स। मतलब कुल मिला के 8 फिल्में अमिताभ बच्चन जी के साथ की थी। जंजीर के बाद इनकी दोस्ती बढ़ गई एंड उन्होंने 7 फिल्में और की जिसमें से 6 तो ब्लॉकबस्टर्स थी और 1 इतनी अच्छी नहीं चली। 1976 में इन्होंने हेरा फेरी, 73 में जब जंजीर की, उसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ 76 में हेरा फेरी, फिर खून पसीना। एंड ही खून पसीना इन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी लेकिन सिर्फ प्रोड्यूस की थी। एंड देन मुकद्दर का सिकंदर 1978, जिसमें उन्होंने गाना जो लिखा, अरे माय गॉड, सलामे इश्क मेरी जान, ओह वाओ, I can't play that song because it's already been played over the weekend. And then Lawaris, 1981 में अमिताभ बच्चन अगेन, नमक हलाल 1982 की एंड शराबी, ऑल हिट्स एक्सेप्ट द 7th फिल्म विच वॉज जादूगर। इट वॉज एन, आई वुडंट कॉल इट अ फ्लॉप, बट इट एंडेड द सक्सेसफुल स्ट्रीक ऑफ जो प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जो थी सक्सेसफुल स्ट्रीक। इन 1991 ही प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड जिंदगी एक जुआ विद अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित, बट इट वॉज अ कमर्शियल हिट। म्यूजिक आज भी हिट है, मेरे फेवरेट गाने हैं सब। एंड उनकी उम्र थी 52 साल की। अब आपने सुना ना, 29 साल का एक नौजवान जिन्होंने शुरुआत की थी इंडस्ट्री में, वो अब 52 साल के हो गए, यानी वॉज प्रोड्यूसिंग एंड डायरेक्टिंग। एंड 1996 में जब उनकी उम्र थी 57 साल की, ही इंट्रोड्यूस्ड राजकुमार सन पूरू राजकुमार इन बाल ब्रह्मचारी 1996 में विद करिश्मा कपूर एंड दीपक तिजोरी। इट वॉज एन अनसक्सेसफुल फिल्म। अब फिल्में जब फ्लॉप होने चलती है तो आदमी डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में कभी कभी शराब पी लेता है। दिस वॉज हिज डाउनफॉल। इन 1993 बिफोर द राजकुमार सन्स पूरू राजकुमार की फिल्म बाल ब्रह्मचारी, इन्होंने डायरेक्ट की थी, पार्थो घोष ने डायरेक्ट की थी फिल्म और इन्होंने प्रोड्यूस की थी अ बाइलिंगुअल फिल्म कॉल्ड दलाल विद मिथुन चक्रवर्ती। आयशा जुल्का एंड राज बब्बर. इट वॉज द 8th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 1993. उसके बाद फ्लॉप्स होने लगी. नाउ हिज चॉइस ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स दूसरे भी थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स वर कल्याण जी आनंद जी. फ्रॉम 1968 हसीना मान जाएगी, जंजीर, हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, जादूगर, ये सब फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी. फिर बप्पी लहरी जी के क्या साथ निभाया इन्होंने, नमक हलाल, शराबी, जिंदगी एक जुआ, बाल ब्रह्मचारी एंड दलाल. अदर फिल्म्स, चमेली की शादी जिसमें उन्होंने सिर्फ स्क्रिप्ट लिखाई थी, एंड देन मुझे मेरी बीवी से बचाओ 2001 की, ही प्रोड्यूस दैट फिल्म, वन ऑफ द लास्ट वंस ही डिड. एंड प्रकाश मेहरा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बॉलीवुड डायरेक्टर टू ट्राई एंड वेंचर इन टू हॉलीवुड, अ जॉइंट वेंचर इन द लेट 80s. उन्होंने गॉड कनेक्शन नाम की एक फिल्म में चार्ल्स ब्रॉन्सन को रखा हुआ था, लेकिन एंड मैनी अदर आर्टिस्ट. But it was, though a heavily funded project, it never came to light, really speaking. His death was 17th May 2009 in Mumbai due to pneumonia and multiple organ failure. We are remembering producer, director, lyricist, one of the pioneers of masala films, Prakash Mehra. It's his 87th birth anniversary.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you the latest rate now being 127.75 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
4: 25? Seriously?
3: Sounds like Ojo time.
4: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
3: Sorry about the wait. How can I help?
4: You can help me celebrate. I won.
5: Feel the fun. Play Ojo.
6: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Gajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
11: Discover Gajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
10: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
11: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
10: Gajal's Couture Southall, where every occasion find its perfect style.
11: Visit gajalscouture.co.uk.
12: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
13: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
14: Are you sitting on a mortgage? remortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
15: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
14: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
15: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
14: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
16: Location, location, location.
17: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
17: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
16: high appreciation
17: in Dubai.
18: Start to

0: up to Cardgill on Breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jemin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Search is changing.
5: Customers aren't just using Google anymore.
4: They're asking AI.
5: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
4: One business, one recommendation.
5: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
4: Will your business be the answer?
5: Or the one that got left behind?
4: The future of search has already started.
5: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टैक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24-hour लाइन.
10: ईपर्ड तैयार हो जाइए. वेंसडे 15 जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला ईपर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका. साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ. बीकानेर वाला 513-519 ग्रैंड बुक रोड गेंटसिल ईपर्ड IG2-6HA बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद.
11: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
13: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
12: Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold.
15: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
16: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: We are listening to songs that were written by none other than Prakash Mehra. Prakash Mehra, producer and director. Ye film thi Ek Kumara, Ek Kumari, Ek Kumara. It is the 87th birthday.
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like I was saying, it was a song that was written by Prakash Mehra ji. Inhone itni produce ki, direct ki filmein, lekin lyrics mein bhi wo kam nahi the. Unhone ek कुंवारी एक कुंवारा 1973 की फिल्म जो थी उसमें इन्होंने ये गाना लिखा एंड कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक डायरेक्टर थे एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज़ हसीना मान जाएगी जहाँ कल्याण जी आनंद जी का ही म्यूज़िक है और रफ़ी साहब ने गाया हसीना मान जाएगी एंड हसीना मान जाएगी में ही एक्चुअली डायरेक्टेड हिज फर्स्ट फिल्म विद शशि कपूर इन अ डबल रोल 1968 जब उनकी उम्र थी सिर्फ 29 साल की
1: फील गुड हिट्स इन द सन विद लाइक अ गोल्ड

0: पहचाने मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी।
1: हसीना मान जाएगी एंड दिस सॉन्ग वॉज रिटन बाई प्रकाश मेहरा यस एंड हिज फर्स्ट डायरेक्शन।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3396. Indian rupees 128.15, Pakistani rupees 372.54, Afghanistanis 86.39 and Kenyan shillings 173.07.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.59 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Leica Gold.
5: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
6: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
7: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
8: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
6: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
7: Thanks, playtime's over. Mmm, lovely.
3: Feel the fun, Play Ojo.
8: 18 plus gamble aware.
9: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
10: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
9: सच?
10: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
11: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड गैंसिल इलफोर्ड IG2 6HA। कॉल करें 07555-506015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया Now in Ilford.
12: आपके सामने एक रेड बटन है।
13: दबा दिया।
12: नहीं दबाना था।
14: The madness is back. धमाल 4.
15: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
14: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
16: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
14: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
17: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता?
18: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
19: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
13: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
20: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts. Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
2: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: फिल्म शराबी का गाना, जो प्रोड्यूस और डायरेक्ट की फिल्म और गाना भी लिखा, दूसरे गाने भी लिखे थे इन्होंने, ये सुनिए।
1: Like a Radio 90s, Like a Radio Punjabi, Like a Gold 2, now available on the Like a Radio mobile app and Alexa.
0: फिल्म दलाल।
2: हुए पानी में कंकर नमा सांवरी।
0: Written by प्रकाश मेहरा।

A music piece is played by Manorida. Manorida, yani ke Manohari Singh. And he was born in Kolkata on March the 8th, 1931. And he passed away at the age of 79 on 13th of July, 2010. Ji haan, ab kaafi 16 saal ho gaye hain. Aur main 13 July 2010 ko I was in Mumbai. Aur main funeral mein bhi gaya tha. और जहाँ से बॉडी ले जा गई थी इन जुहू वेर ही लिव्ड, वहाँ से वो लोग क्रेमेटोरियम पे जब ले गए थे बॉडी, तब हम इकट्ठा हुए थे. आई हैव नेवर एवर सीन सो मैनी म्यूजिशंस एंड सिंगर्स गेटिंग टुगेदर इन वन प्लेस. मैं सच्ची चकरा गया था जब मैंने देखा कि कितने लोग मनोरिदा के लिए आए थे. अ मैन हु used to, I mean, no musician could be compared with Manorida. इन्होंने saxophone बजाया तो अलग तरीके से, alto saxophone, soprano saxophone, tenor saxophone, फिर इन्होंने trumpet बजाई, इन्होंने flute भी बजाई, इन्होंने piccolo भी बजाया, इन्होंने clarinet भी बजाया, mandolin भी बजाया. The next song I'm gonna play is जहाँ पे इन्होंने mandolin बजाया था एक गाने के अंदर. And pan flute, harmonium, bansuri, recorder, ये सब instruments में वो माहिर थे. इनकी शुरुआत कैसे हुई? 11 साल का लड़का 1931 में जन्मा हुआ and his father and uncle used to play in brass bands. तो वो हमेशा जाता था और ये brass bands में jazz music और ये सब सुनने के बाद और उनके साथ play करने के बाद he became so versatile. जी हाँ, इसलिए उनका जो प्लेइंग था वो स्पेशल था. इन्होंने एक बाटा शू कंपनी में, एक जो बाटा नगर इन कोलकाता था, अंडर इट्स हंगेरियन कंडक्टर, एक ब्रास बैंड था, उनका एक हंगेरियन कंडक्टर था जोसेफ न्यूमैन. वो हमेशा हर एक इंटरव्यू में जोसेफ न्यूमैन का नाम हमेशा लेते थे, क्योंकि इनकी बदौलत वो बने जो बने. When Newman left in 1945 में जब वो चले गए his master's voice में, तो Manorida ने follow किया उनको कि मैं आपके साथ ही जुड़ के रहूँगा. And then from classical music he started playing Hindi and Bengali songs his master's voice orchestra के लिए. And then Newman was arranging all composers के लिए, you know, S.D. Burman के लिए, उनके लिए वो arrangements करते थे. And Tim Baran and Ravi Shankar वगैरह. And he also played flute and piccolo at the Calcutta Symphony Orchestra. मैं बात कर रहा हूँ हमारे Manorida की. वो flute और piccolo भी बजाना सीख लिया इन्होंने Calcutta Symphony Orchestra में. फिर इन लोगों ने उनको रखा English key flute बजाने के लिए Calcutta Night Club में. और कैलकटा नाइट क्लब जो थी एक रेस्टोरेंट थी वहाँ पे, फिरपोज रेस्टोरेंट, जहाँ पे जॉर्ज बैंक्स ट्रम्पेट प्लेयर ग्रैंड होटल में वो लोग बजाते थे. तो Manorida को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कोलकाता नाइट क्लब सीन में. एंड सो ही गॉट द क्रेज, ये नाइट क्लब सीन था तो इन्होंने बोला कि मैं सैक्सोफोन सीखूंगा अभी, और वहाँ से इनकी करियर शुरू हुई. Joseph Newman, he left his master's voice to settle in Australia. तो बड़ा दुखी हो गए, कहने लगे अब तो क्या करें, वो तो चले गए. तो Manorida moved on to play at Firpo's, वो जो नाइट क्लब सीन जो था वहाँ पे. म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी मिले उनको और Manorida ने उनकी बात सुन ली, कहा कि तुम मुंबई जाके अपना लक ट्राई करो. एंड ही डिड दैट. He moved there in 1958. Yes, Manorida ne kadam rakha Bombay Nagari mein, jo aaj Mumbai hai. And that was the best thing that happened to the film industry. 1958 mein Sachin Dev Barman ke saath wo as a saxophonist, unhone ek movie thi Sitaron Se Aage, usme unhone bajaya aur background music mein bhi saath diya. And play for many other music directors as well. और जब एक दो गाने निकल आए तब इंडस्ट्री ने बोला कि कोई आया है यहाँ.

0: कुछ नोटेबल गाने तो आपने अभी सुने, गाता रहे मेरा दिल, उसके अंदर क्या इन्होंने सैक्सोफोन बजाया, और दूसरा यही वो जगह है ये रात फिर ना आएगी। अब मैं बातें जितनी करूँगा उतने गाने कम होते जाएंगे, सो मैं बातें यहाँ ख़त्म करता हूँ और हम सुनते हैं इन्होंने कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से गाने में बजाया। एक फिल्म थी प्यार का मौसम, उसमें एक गाना था तुम बिन जाऊं कहां, उसमें आप सुनना इन्होंने जो मैंडोलिन बजाया था। यस, बड़ा मजा आएगा, सुनते रहिएगा। मैं हूं बाली ब्रह्मभट और लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, बॉलीवुड की कहानियां सुनाता हूं, जिनसे मैं मिल चुका हूं उनके बारे में भी मैं बताता हूं। ही लव्ड मी एंड वी यूज टू बी टुगेदर, क्योंकि उनको उनके बेटे को मेरे पास भेजा था एल्बम के अरेंजमेंट्स के लिए, एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स आउट ऑफ दैट। मनोरी दा ने मेरा एक जैज़ एल्बम था, उसके अंदर एक जैज़ वाला गाना था, उसके अंदर वो मैंने बुक किया था सारे म्यूजिशनों को, मैंने नहीं बुक किया था, एक अरेंजर ने बुक किया था। तो जब वो स्टूडियो के अंदर सब म्यूजिशियंस बजा रहे थे एंड दे वर प्लेइंग वायलिन्स एंड सैक्सोफोन एंड सब म्यूज़िक बज रहा था, तभी ये रिकॉर्डिस्ट मेरे पास आया और कहने लगा, आपको पता है इन म्यूजिशियनों में एक बंदा जो बैठा है ये सबका बाप है, वो आज एक म्यूजिशियन के तौर पे आए हैं। मैं बोला कौन है? बोले वो बैठे हैं ना जो नेपाली लुक वाले, वो मनोरी दा है। उन्होंने कहा कि आर डी बर्मन के साथ ये सब फिल्मों में इन्होंने बजाया, इन्होंने गाने गाए, और एक गाने में तो विसल भी उन्होंने बजाई है, ये शाम मस्तानी, उसमें विसलिंग जो की है वो भी, और गाइड फिल्म, ये सब मुझे बताया तो मैं पागल हो गया। और उनको जाके मैंने उनके पैर छुए और मैंने कहा आप एक म्यूजिशियन की तरह क्यों आए, यू शुड बी द अरेंजर हियर। बोले जो काम मिलता है मैं करता रहता हूँ, इस उम्र में ये सब नहीं देखना चाहिए, हमको रोज़ी रोटी कमानी है, हमको घर चलाना है। एंड आई फेल इन लव विद दैट मैन, देन आई रेगुलरली केप्ट ऑन मीटिंग हिम, एंड दैट्स व्हाई आई हैड गॉन टू हिज फ्यूनरल एज़ वेल। Manorida.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.75 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: We hit Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: Well, FIFA is into semi-finals now because Spain beat Belgium, England beat Norway, Argentina beat Switzerland, and tomorrow is going to be France versus Spain in Dallas. And on Wednesday, it's going to be 15th of July, 8 p.m., England versus Argentina in Atlanta. Yes! Abhi sunte rahiyega. Don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
8: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
7: डेजर्ट सफारी,
8: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
7: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
8: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
9: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
1: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
9: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
1: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
9: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
1: Visit kajalskachor.co.uk.
10: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में इंडिया फेमस छोले भटूरे अब मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड, गैंसू, इल्फर्ड, IG2-6HA, बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
11: आपके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना था।
12: The madness is back, धमाल 4।
13: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
12: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख and जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
14: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
12: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
15: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आगे कैसे आ जाता।
16: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે।
17: બીએપીએસ મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર।
16: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
17: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
16: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
17: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
16: કોલ 020-8900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ।
17: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
18: લંડન, ગુડ ન્યૂઝ, આપકા ફેવરિટ આઈટેક અબ TRS કેશ એન્ડ કેરી સાઉથ હોલ મેં। હ્યુજ વેરાયટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ વિથ better prices, perfect for retailers, traders, takeaways and caterers। iTech is open 24/7 with free parking। Full iTech at unit 123 south bridgeway, south hall, UB24AX। once you visit you come again and again।
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
20: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
21: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बिन।
1: ये गाने में जो मैंडोलिन इन्होंने जो बजाया था जिस अदा से, पूरे गाने को हिट कर दिया इन्होंने। और आगे मैं बताता हूँ आपको कौन से गाने इन्होंने अरेंज किए थे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए। मनोरिदा, मनोहरी सिंह।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Next gana jo aapko main sunaunga usme inhone flute bhi bajayi thi aur saxophone bhi bajaya tha, and then uske baad ek dusra gana hai जो फिल्म दुल्हन एक रात की का गाना है जिसमें इन्होंने फ्लूट बजाई थी। सो गाने इन्होंने इंस्ट्रूमेंट तो बजाए थे लेकिन साथ साथ में इन्होंने अरेंजमेंट्स भी की थी कितने गानों की। जैसे एक गाना है, सुनो कहो कहा सुना कुछ हुआ क्या आपकी कसम का, वो अरेंजमेंट इन्होंने की थी। फिर ये गाना तुम बिन जाऊँ कहाँ, जो किशोरदा का भी वर्जन और रफ़ी साहब का भी वर्जन इन्होंने अरेंजमेंट की थी पूरे गाने की। एंड देन आने वाला पल, फिल्म गोलमाल का गाना 1979 का, वो इन्होंने अरेंज किया था। एंड देन कस्मे वादे 78 87, आई एम कन्फ्यूज्ड, एनीवे कस्मे वादे जो फिल्म थी आई थिंक 87, तो उसमें जो टाइटल सॉन्ग था वो भी इन्होंने किया था। फिर एक गाना इतना खूबसूरत किशोरदा का गाया, क्या नज़ारे क्या इशारे, वो गाना झील के उस पार का 1973 का, वो भी मनोरिदा ने अरेंजमेंट की थी। अमर प्रेम का गाना कुछ तो लोग कहेंगे, वो तो मेरा एंथम है क्योंकि लोग मेरे बारे में काफ़ी बातें करते रहते हैं अच्छी बुरी, लेकिन मैं ये गाता रहता हूँ और वो सुन के मैं अपने आप को मना लिया करता हूँ। थैंक्स टू मनोरिदा फॉर अरेंजिंग इट। एंड देन करवटे बदलते रहें, आपकी कसम करवटे बदलते रहें, कितना खूबसूरत गाना। एंड देन मेरे जीवन साथी का, ओ मेरे दिल के चैन, वो भी गाना इन्होंने अरेंज किया था। देन जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं, वो गाना जो था आपकी कसम का 1974, एंड दैट इज़ ऑल्सो अरेंज बाय हिम। एंड देन अमर प्रेम का दूसरा गाना ये क्या हुआ, है ना। All these songs were arranged by Manorida. आगे जाते हुए और भी मजा करेंगे, सुनते रहिएगा।
2: This is Like a Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Like a Group.
1: Bikaner wala. That's right, Bikaner wala. Oh my god, it's a popular street food place. Bikaner wala is now open in Gants Hill, Ilford. Celebrate the grand opening this Wednesday, 15 July from 4 PM with your favorite Laika Radio Network presenters. Taste the famous Chole Bhature. Woohoo! Raj Kachori, Mithai, Chaats and more at Bikaner wala, Ilford. 513-2519 Cranbrook Road, IG26HA, Bikaner wala, the legendary taste since 1905. And दूसरा news भी मेरे पास है आपके लिए, और वो news होगा जो आप सुनेंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। That is the Diwali story. Radio, Laika Radio Network is the exclusive radio partner of the stage musical Diwali Story, taking place at the OVO Arena Wembley on Sunday. Remember, Sunday, 27th September. Visit AXS or Wembley for tickets. And Raga San, Laika Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Raga San. Details at laikaradio.com.
0: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.
4: Ye hai
5: Leica Gold.
6: Leica Gold.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travels to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
1: It's about East African Asians, and you'll see Deep Raja talking about East African Asians in podcast episode number 24. Episode sheds lights on the roots and identity and journey of East African Asians. We are one of them. I am one of them. Leica Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
2: Leica Extra is here.
5: Ye hai Leica Gold.
6: Leica Gold.
3: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
7: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
8: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
8: Visit TravelHubWorld.com.
9: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
10: Packed for the trip? Gifts? Passport?
11: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
11: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
12: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
13: T's and C's apply.
14: Experience the ultimate escape. 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111. From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
15: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Dutch, look, check. Dutch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
16: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: जब लता जी गा रही हैं उसके पीछे भी जो बैकग्राउंड में सैक्सोफोन इन्होंने बजाया, फ्लूट भी गाने में इन्होंने बजाई थी, और जो पहला म्यूजिक पीस आपने सुना, वाह, फिल्म माया का 1961, वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन मनोरिदा इन द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज़ संग बाय रफ़ी साहब, दुल्हन एक रात की, उसमें आप सुनिएगा बहुत खूबसूरती से इन्होंने फ्लूट बजाई है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

बीच बीच में जो फिलर्स थे मैंडोलिन के, वो सब मनोरिदा ने बजाए थे। नेक्स्ट गाना जिसमें इन्होंने सैक्सोफोन जो बजाया था, फिल्म आरजू का गाना, दैट मतलब के लेट्स पुट इट दिस वे, गूज बम्प्स।

when he plays the saxophone in the music pieces, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. एंड दैट्स वाई द सॉन्ग्स आर एवरग्रीन. आई होप यू एंजॉयड द ट्रिब्यूट ऑफ नन अदर देन मनोरिदा. आई एम गोइंग टू एंड हियर विद द विसल. ही विसल्ड इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. ये श्याम मस्तानी, वो सुनते हुए हम जा रहे हैं. द ग्रेट माएस्ट्रो

Two different kind of songs. The first song, of course, for Dinesh Popaji, jinka sabse pyara gana hai ye since so many years. First time he heard it from me when I played it on Dil Se Radio. Anyway, aage badhte hain. Ye gana Kumar Sanu ji ka gaya hua Zindagi Ek Jua ka wo was likha gaya tha Prakash Mehra. Prakash Mehra ji was a very talented producer, director and a lyricist as well. 27 filmein, sirf 27 filmein, usme unhone itna kamal kar diya. Ab dusra gana jo tha, that was related to Manorida. Manorida, maine second hour mein jo tribute ki thi. Actually, Manorida was not only a musician or an arranger, he was also a music director. And then he had actually joined forces and worked as a music director as a Basu Manohari. Basu Manohari ek jodi thi jo music direction karte the. Inhone ye film ki thi Sabse Bada Rupaiya. Usme ek gana to bada khoobsurat tha, Vada Karo Sajan. Wo mera ekdam favorite hai. Lekin jab ye gana suna sakunga tab main sunaunga. अभी मेरे को ये गाना सुनाना था महमूद भाईजान का, जिसमें सन एंड सैंड, वन ऑफ माय फेवरेट होटल्स इन इन मुंबई. तो उसका नाम जब आता है मैं खुश हो जाता हूँ. एंड यस, ऑल आई कैन से इज द टू ट्रिब्यूट्स वेंट वेरी सक्सेसफुल एंड आई गॉट वेरी मैनी कॉम्प्लीमेंट्स हियर एंड थैंक यू मीरा वूज एट écrivez en français. Je parle un peu, je ne comprends beaucoup, mais merci beaucoup pour votre message. Oui. So I can tell you about our artist of the week. Artist of the week is Ravi Shankar Sharma. The music director Ravi, so talented with all his beautiful films. इन्होंने किन किन को एक नई लाइफ दे दी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि निकाह फिल्म में सलमा आगा वॉज बॉर्न एज अ सिंगर. एंड इन्होंने जैसी जैसी फिल्में की थी 1950s से, और उनका नाम एज बॉम्बे रवि, व्हेन ही यूज्ड टू डू साउथ की फिल्में जो करते थे, ही यूज्ड टू बी कॉल्ड बॉम्बे रवि. तो रविशंकर शर्मा की जो फिल्में थी और कॉम्पोजिशंस थी, उनमें से मैंने एक स्पेशल कॉम्पोजिशन चूज़ की है. व्हाई? बिकॉज द हीरोइन ऑफ द फिल्म वाज बीना राय. आज बीना राय की बर्थ एनिवर्सरी है, 105th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बीना राय. आई थिंक 105th, 95th birth anniversary of Beena Rai, who was born on 13th of July 1931 and she passed away at the age of 78 on 6th of December 2008. Beena Rai, unka asli naam tha Krishna Sarin, and she hailed from Lahore.

0: and born in 1931, like I said. And इन्होंने जब कानपुर में रहते हुए she moved out for acting.
1: Yes.
0: और बीना राय she lived in कानपुर. तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया कि उसको एक्टिंग करनी है. एंड शी वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक. जब पेरेंट्स ने मना कर दिया तो पेरेंट्स मान गए और कहा कि ओके बाबा तू जाना और तेरे को अगर कोशिश करनी है तो. एंड शी देन वेंट इनटू अ टैलेंट कॉन्टेस्ट. जब वो इजाबेल थोबन कॉलेज लखनऊ में थी इन 1950 शी केम अक्रॉस एन एडवर्टिजमेंट फॉर अ टैलेंट कॉन्टेस्ट. उसमें एप्लीकेशन की एंड शी वेंट फॉर इट एंड शी वन 25,000 रुपीज़ एंड शी वन द कॉन्टेस्ट एंड शी गॉट अ लीडिंग रोल इन किशोर साहूज कालीघटा. उसके बाद तो इट्स ऑल हिस्ट्री. लेकिन जो गाना मैंने चुना है फिल्म घूंघट का 1960 का संग बाय लता मंगेशकर एंड दिस पर्टिकुलर फिल्म का जो म्यूजिक दिया था दैट वॉज रवि म्यूजिक डायरेक्टर रवि. सो अ कॉम्बो इनकी जो हम ट्रिब्यूट भी करेंगे और ट्रिब्यूट के साथ साथ अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गाना विल बी वन दैट वॉज पिक्चराइज्ड ऑन बीना राय. सुनते जाइएगा. मैं हूँ बाली ब्रह्मभट ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव DAB एलेक्सा गूगल होम एंड LaikaGold.com ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप एंड इट इज़ द 370th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स जहाँ पे आप राज बद्दन जी को सुनेंगे फ्रॉम 4 to 7 एंड यू विल बी हियरिंग सैंडी शाह फ्रॉम 4 to 7 विद हिज ड्राइव टाइम शो on Like a Gold.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 127.75. 127.75 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai.
4: Like a gold.
3: Like a gold.
4: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: FIFA World Cup 2026 is into semi-finals and tomorrow France versus Spain in Dallas and on Wednesday 15 July 8 p.m. that will be England versus Argentina in Atlanta. Don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: We hit
3: Leica Gold.
5: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai. Start to

शकील बदायूनी का गाना लिखा हुआ और बीना राय को ट्रिब्यूट देते हुए ऑन हर 95th बर्थ एनिवर्सरी फिल्म घूंघट, संगीत रवि, अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक 1960 की फिल्म। इसमें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया बीना राय को और वहाँ पे मेजर अपसेट था। दिस वॉज द आई थिंक इट वॉज फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा था, इट वॉज 8th फिल्म फेयर अवार्ड जो 50s में शुरू किया गया था 1960 में। 8th फिल्म फेयर अवार्ड में बीना राय को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जब दिया गया तब देर वॉज अ मेजर अपसेट बिकॉज पीपल वॉन्टेड मधुबाला टू गेट द अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन मुगले आजम। सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम दैट हैड अकर्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर विद फिल्म फेयर अवार्ड्स। एंड आगा द comedian for the film, he had got a nomination for best supporting actor, so thought I'd share out this little snippet with you। And aage jaate hue ek bada acha samachar lekar aata hu main aapke samne, aur wo kaun sa hoga abhi pata chalega।

0: Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. The M4 is heavy onto the elevated section eastbound from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. A312, the parkway slowing southbound before the M4 Junction 3. A312 Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. A406 North Circular Road slowing both ways at the Hanger Lane gyratory. Slowing on the A3 West Hill northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road. And congestion on the A316 Chertsey Road westbound from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout. To the Tube, and trains not stopping on the District and Piccadilly lines westbound at Barons Court, and that's down to engineering works. That's your latest traffic and travel.
0: Yeah.
2: Leica Gold.
0: Leica Gold.
3: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल At all protected.
4: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: Your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
6: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
7: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
5: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
6: Thanks, playtime's over. Lovely.
8: Feel the fun. Play Ojo.
9: 18 plus gamble aware.
10: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 hour line.
11: Rice khareedne ka perfect time aa gaya hai. Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg ya 2 times 10 kg ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality or value, dono ek saath.
12: She can't hear you, but danger always hears her coming.
13: Sab dar bhag jaye.
12: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas on the 17th of July. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
14: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
15: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
14: Jaimin Foods Desi Cravings, available at nearest ethnic grocery stores.
0: Next, Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Leica Gold.
16: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। नया सप्ताह तो हैप्पी न्यू वीक, नया दिन तो हैप्पी मंडे। तो कुछ नए से आप और कुछ नए से हम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना। वीकेंड के बाद में जब मंडे आता है तो पूरी एनर्जी के साथ आप और हम मिलके शुरू करते हैं ये पहला दिन ऑफ द वीक, बड़े ही जोश के साथ, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। एंड हाँ, देखो शाम हो गई एंड यस, पहला दिन निकल चुका है। तो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त यहाँ पे आके अपनी अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। आइए आइए, बिल्कुल अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आपका नाम दर्ज हो चुका है। एंड माई साइलेंट लिसनर्स, रोज मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है, आइए अपना नाम दर्ज करवाइए, हमें भी बताइए कि शो कैसा चल रहा है। सो भाई, हमेशा की तरह किसी न किसी लाइफ थियरी में बात होगी, अभी नहीं लेकिन कुछ देर बाद। हैं, सवाल नहीं पूछूं? ऐसे कैसे होगा, सवाल तो आएगा ही पक्का। अच्छा, ये दो गीत तो मज़ा आया ना पहले, दोनों गीतों के साथ में मखना, मतलब स्टूडियो में इतना मखना वाला माहौल बना था फुल वॉल्यूम। उसके बाद में आया मौसम दोस्ती का ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक। एंड दिस इज दिस फिल्म एक तो जहन के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय टेलीविजन जर्नी इन माय वेरी यंग डेज, दैट टाइम द फर्स्ट सेलिब्रिटी इंटरव्यू आई डिड वॉज भाग्यश्री पटवर्धन। एंड दैट फोटो, जब मैं अपने आप को देखती हूँ उस फोटो में, बिल्कुल छोटी सी 18 साल की मैं एंड भाग्यश्री पटवर्धन, यार आई मीन इमेजिन 90s में बच्चे कितना कूद कूद के हम भाग्यश्री एंड सलमान खान के पीछे दीवाने थे। एंड वो पहला इंटरव्यू उनके साथ में, उनको इंटरव्यू करना, लिटरली दैट वॉज अ राउंड टेबल, वहाँ पे बैठे थे सारे मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले और हम टेलीविजन मीडिया वाले। एंड मैं तो बस देखती रही एंड माई डायरेक्टर पीछे से पीठ में टप से याद दिलवाया, बेटा काहे के लिए आई हो यहाँ पे। आई हैव टू टेल यू, भाग्यश्री पटवर्धन इज गॉर्जियस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो एक मेकअप अलग होता है, मेकअप लगाने के बाद अलग होता है, लेकिन ये दोनों के साथ में इतनी खूबसूरत हैं एंड शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन एज वेल। तो चले अपने सवाल की तरफ, हो गया कहानी सुन ली, बहुत सारी कहानी आएंगी एज यूजुअल। आज का मेरा सवाल, ओके सो क्या होता है हमारे वार्डरोब में से कोई एक हमारा ऐसा कोई एक कपड़ा जो होता है वो हमारा इतना दिल के करीब होता है, पता नहीं क्या ही इमोशन उसके साथ में जुड़े होते हैं। सो वो एक कपड़ा फेंकने में चाहे कितना भी वोन आउट हो जाए, मतलब लेट इट बी योर पजामा, एनी टी शर्ट, वॉट एवर दैट इज, वो हम लोग जल्दी फेंकते ही नहीं हैं। सो विथ मी आई हैड अ ब्लैक टी शर्ट विच माई कज़न, ही सॉ दैट टी शर्ट 4-5 साल पहले और फिर 4-5 साल बाद मेरे यहाँ पे आया, तो ऑब्वियसली यू वेयर योर पजामाज एंड टी शर्ट शाम में। सो इज लाइक, आशुताई यू स्टिल हैव दिस ब्लैक टी शर्ट, मतलब देखो क्या प्रॉब्लम है, पैसों की कमी, वाई डोंट यू थ्रो दिस? एंड आई सेड मेरे इसके साथ में इमोशन जुड़े। तो पॉइंट क्या है आज, सीधे सीधे पॉइंट आप सबसे ये पूछना है कि आपके वार्डरोब का कौन सा एक ऐसा कपड़ा है जो 8-10 साल 5-6 साल कितने भी हो जाए लेकिन यू डोंट वॉन्ट टू थ्रो इट। ओके, आई नो रैंडम सा सवाल ना, मंडे है ना, थोड़ा हल्का फुल्का रखते हैं और बाकी डीपर क्वेश्चंस और डीपर डिस्कशंस बाद में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your 1 pound in British sterling can get you up to 127 Indian rupee and 50 paise. And don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.

0: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Like a Gold.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 32 मिनट्स पास्ट 7, 7:32, 13th ऑफ जुलाई मंडे. आपका और मेरा साथ रहने वाला है पूरे 3 घंटे के लिए, शाम 7 से 10 बजे तक. सो 13th ऑफ जुलाई इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. क्यों? क्योंकि आज मेरी जिंदगी के सबसे स्पेशल पर्सन का बर्थडे होता है, एंड दैट इज़ माई पापाज बर्थडे, एंड ही इज़ 80 ईयर ओल्ड टूडे. I just love my papa too much. मतलब मैं मम्मी की जितनी दीवानी थी उतनी पापा की भी दीवानी हूँ. एंड जितने भी पापा लोग, बेटियों के पापा अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा. देखिए, आज मैं जहाँ पे इस माध्यम पे आके बैठी हूँ और आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पे आके बैठ के बातें करने का, आई ओ एवरीथिंग टू माई पापा. जब फ्रॉम द एज ऑफ 18 मैंने मीडिया शुरू किया था, माई फादर बिलीव्ड इन मी, ही सपोर्टेड मी. मैं डर जाती थी, सहम जाती थी, पर मेरे पापा तब मुझे सपोर्ट करते थे. सो जितने भी बेटियों के पापा हैं ना, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे पापा ने मुझमें ट्रस्ट दिखाया, मुझमें बिलीव किया और बिल्कुल रिलेंटलेसली हमेशा मुझे सपोर्ट किया. एंड सी, हियर इज़ द प्रोडक्ट. मैं यहाँ पे माइक पे आके बैठी हूँ और आप सबसे गपशप कर रही हूँ. तो ये जो आप लोगों को हमेशा मुझ में एक्साइटमेंट और उत्साह जो दिखता है ना, इट ऑल कम्स फ्रॉम माय पापा. और जो ये बोलने की समझदारी एंड चीज़ों को जिस तरीके से मैं ग्रास्प करती हूँ, लेती हूँ, बोलती हूँ, दिस कम्स फ्रॉम माय मदर. व्हाट अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन यार. आई सीरियसली लव माय सेल्फ एंड माय पेरेंट्स एज वेल. सो हैप्पी बर्थडे पापा टू यू, एंड थैंक यू हमेशा मुझ पर भरोसा करने के लिए. एंड एज आई सेड, पापा लोग अपनी बेटियों पे भरोसा कीजिए और हिम्मत दीजिए. देखिए, हम बेटियों का ना सबसे पहला मेल इंटरेक्शन जो आता है ना, वो अपने पापा के साथ में आता है. अब मर्दों पे भरोसा करे नहीं करे, ये सारी चीज़ें हमारी उस रिलेशनशिप से शुरू होती है. जितना आप लोग प्यार दुलार लाड़ देते हैं ना, उतना हमें अपने आप पे भरोसा मिलता है. एंड दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज से दिस, कि माई मीडिया जर्नी इज इट्स ऑल अबाउट माई पापा. सो ऑल द डैड्स, स्पेशली डॉटर्स के डैड्स, बिलीव योर डॉटर्स. दैट्स माई मैसेज अभी. एंड चलते हैं यादों की बारात की तरफ. आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए.
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी, यादों की बारात.
3: ये रातें, ये मौसम.

हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: dates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है.
4: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में.
3: सच?
4: बिल्कुल. देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह.
5: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड गैंसिल इलफोर्ड IG2 6HA. कॉल करें 07555-506-015. बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ in Ilford. Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, like our listeners, get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalskachor.co.uk.
7: आपके सामने एक रेड बटन है.
8: दबा दिया.
7: नहीं दबाना.
9: The madness is back. धमाल 4.
10: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
9: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
9: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
12: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता.

0: book now. Visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 50 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। और आज की लाइफ थियरी के बारे में मैंने तो बात की नहीं, चलिए अब जरा बताते हैं आज की लाइफ थियरी कौन सी है। द फील गुड थियरी। ओके, सो ये मेरी अपनी थियरी है जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब भी हम शॉपिंग करते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ का नज़ारा देख के अच्छा लगता है। घर में कोई अच्छी सी डिश बना के अपने घर के लोगों को खिलाते पिलाते हैं, अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर होता है। यहाँ पे आप लोग रेडियो सुन रहे हैं, शो सुन रहे हैं, अच्छा लगता है। किसी के लिए कुछ करना, ये वाली फीलिंग बहुत अच्छी है। हम लोग चैरिटी करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, लोगों के लिए सोशल सर्विस करते हैं। एक चीज़ जिसके बारे में मैं सोचती रहती थी हमेशा, लेकिन आज जब मैं वो करके आई हूँ ना, यकीन करिए इतनी ज़्यादा खुशी मुझे महसूस हो रही है आज। फील गुड फैक्टर जो है ना, वो सही मायने में महसूस किया है। सो एज यूजुअल आई वेंट टू माई जिम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अ फीमेल वॉज शी वॉज वर्किंग आउट इन अ कॉर्नर एंड आई हैव नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स। तो मैं अपने आराम से अपने जो म्यूज़िक लगा के अपना काम किए जा रही हूँ, अपना वर्कआउट कर रही हूँ, एंड आई हियर सम लाउड वॉइस एंड आई जस्ट टर्न एंड सॉ दैट लेडी वॉज रियली रियली अपसेट एंड शी वॉज़न्ट इन गुड मूड। एंड जो भी उनका कॉल चल रहा है उस पर वो बड़ी अपसेट होकर बात किए जा रही थी। फिर आई वॉज लाइक ओके समथिंग इज गोइंग ऑन, थोड़ी देर बाद में देखते हैं। फिर आधे घंटे बाद देखा, फिर से शी वॉज वेरी अपसेट एंड देन शी वॉज नॉट इन गुड मूड। अब मुझसे रहा नहीं गया, आई जस्ट वेंट टू हर एंड मैंने उनके शोल्डर पे टैप करके उन्हें हेलो कहा एंड शी वॉज लाइक येस एंड आई सेड आई डोंट नो वॉट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू बट वॉट एवर इट इज़ ये भी निकल जाएगा, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्प्ररी। एंड शी वॉज जस्ट लुकिंग एट मी एंड देन आई आस्क्ड आर यू ओके एंड देन शी वॉज लाइक ओके एंड आई सेड डू यू वॉन्ट मी टू हग यू एंड शी सेड येस एंड आई जस्ट हग दैट फीमेल एंड मैंने दो मिनट उनको पकड़ के रखा एंड शी हैड टीयर्स फ्लोइंग डाउन बट आफ्टर सम टाइम शी वॉज गुड। सो दिस वॉज द फील गुड थियरी फ्रॉम मी।
1: Ashwini, brightening up your weeknights.
2: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
3: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
2: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
3: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.com.
2: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
4: इल्फर्ड तैयार हो जाइए। वेंसडे 15th जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला इल्फर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका। साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ। बीकानेर वाला 513519 क्रैनबुक रोड गेंट सिल इल्फर्ड IG2 6HA।
5: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
4: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel.
8: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
7: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel. At all protected. श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026 अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन आरती सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
10: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
11: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
10: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
11: And you didn't pay those massive roaming charges?
10: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
12: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
13: SonarTours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call SonarTours on 0208 951 0111.
14: The Evening Show with Ashwini.

जी आइए, सेकेंड आवर का आगाज हमने किया था दो बड़े ही बेहतरीन गीतों के साथ में, ताल फिल्म से, ताल से ताल मिला अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज भी। नेक्स्ट ट्रैक वॉज फ्रॉम लव स्टोरी, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया चापानी लगती है। तो ऑल दोज लड़कियाँ है ना, एवरी लड़की, एवरी फीमेल लिसनिंग टू दिस सॉन्ग अपने लिए डेडिकेट कर लेते हैं गाना, है ना। गुड़िया, गुड़िया इज सो क्यूट ना, ओह माय गॉड। एनीवेज, तो अब इस आवर में हम लोग क्या क्या गपशप करने वाले हैं, गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, सुना नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं कि फील गुड वाली थ्योरी बड़ी अच्छी लगी, तो ओवरऑल मेरा कहना उस टाइम पे यही था जो मैं आगे कह ना सकी, वक्त का तकाजा था, कि भाई फील गुड थ्योरी में ना ये चीज़ होती है कि हमारे आसपास कई बार लोगों को सिर्फ एक वो होती ना जादू भरी झप्पी, वो चाहिए होती। एंड व्हाट आई डिड टुडे एंड दैट फीमेल, शी हैड टीयर्स इन हर आईज एंड शी वाज लाइक थैंक यू, आई जस्ट नीडेड दिस। ओके, सो लेट्स बी ह्यूमंस ऑल ऑफ अस, है ना, उसमें कोई मिलावट ना करे, कोई बदमाशी ना लाए, कहीं कोई उसको इम्प्योर ना करे, बहुत सुंदर फीलिंग है ह्यूमैनिटी की। तो अगर आपके आसपास कभी कोई आपको रोते हुए दिख रहा है या किसी प्रॉब्लम में जाते हुए दिख रहा है, तो उस इंसान को ना उस समय ना सब ठीक होगा, इतना बस सुनना अच्छा लगता है। आज तक मैं सोचती थी कि मैं ऐसे ना जाके कभी बोलूँगी, लेकिन टुडे व्हेन आई वेंट एंड व्हेन आई हग

0: रिलीज हुई थी। एंड जी हमारे एक लिस्नर है, उन्होंने कहा कि अच्छा आप देखो समझ चला जाएगा ना कुछ दिनों में, तो मैंने मूंग बड़ी जो होती है मूंग बड़ी वो बनाई। एंड दिस इज सो वेरी एशियन फॉर ऑल ऑफ अस ना, बिकॉज समर हॉलीडेज आई रिमेंबर वी यूज टू मेक साबुदाना का पापड़, आलू का पापड़, एंड ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता था ना एज बच्चन। एंड टेल मी ऑल ऑफ यू, आप सबने ये काम किए होंगे आई एम श्योर बचपन में, कि जब समर हॉलीडेज होते तो एक तो वो गेहूं के बोरे आते थे, ठीक है, वो साफ सुथ करके बिन करके एंड देन ड्रम्स में डालो। अभी तो ड्रम्स की सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है, वी वॉन्ट टॉक अबाउट इट, लेकिन ड्रम भर भर के रखे जाते थे जिसमें नीम के पत्ते नीचे डाले जाते थे, उसके ऊपर गेहूँ एंड कुछ एक पर्टिकुलर टैबलेट होती थी जिसके वजह से वो जो कीड़े होते थे या जो भी यार मतलब छोटे छोटे जीव जंतु आते थे वो नहीं आते थे बिकॉज ऑफ दैट टैबलेट। आई यूज टू बी प्रीटी एक्साइटेड अबाउट समर वेकेशंस, लेकिन वो गेहूं के दो तीन बोरे आते थे ना वो देख के वाई मतलब क्यों करना है, बट इट वॉज फन, इट वॉज डेफिनेटली फन। एंड देन आम के रस की जो जो जो जो पापड़ बनाए जाते थे, एंड बिकॉज आई यूज टू लिव इन अ कॉलोनी, तो वहाँ पर तो हम लोग हर हर घर में बच्चे जा जा के दे यूज टू हेल्प। आई एम नॉट श्योर जो लोग यहाँ पे बड़े हुए हैं कि आप मुझे बताएंगे कि आपके यहाँ पे भी माहौल उस समय ऐसा था कि जो आस पड़ोस के लोग होते थे वहाँ जाके सब समर वेकेशंस में जो भी काम होते थे, कभी गार्डनिंग है, कभी और कुछ काम है, किसी की साइकिल पंक्चर हो गई, किसी या कुछ भी काम हो गया, सो वी ऑल टू गो एंड हैव फन। लेट मी नो अबाउट यू।
1: Radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: Okay, so Tuesday, 14th of July, कल होगा फ्रांस और स्पेन के बीच मैच 8 बजे, and don't forget you get your 15 minutes free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Laika.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Look at you. The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
4: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
3: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
4: Plus, Laika listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
3: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
4: Visit Kajal's Couture .co.uk.
5: आपके सामने एक रेड बटन है, दबा दिया, नहीं दबाना था।
6: The madness is back, धमाल 4.
7: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
6: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
8: गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी?
6: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
9: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।
10: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
11: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
12: इल्फर्ड तैयार हो जाइए, वेंसडे 15th जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला इल्फर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका। साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ। बीकानेर वाला 513519 क्रैनबुक रोड गेंटसिल इल्फर्ड IG2 6HA।
13: बीकानेर वाला परंपरा भी
12: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद।
14: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
1: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai
2: Like a Gold.
0: Like a Gold.
3: भाई जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। गुलामी फिल्म विच वॉज रिलीज इन 1985, उस फिल्म से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में सुनाया आप सभी को ये गीत। अब जरा बात हो जाए गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में शायद कम ही लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रेगुलरली हर रोज़ यहाँ पे गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जिसे सुन के हमें भी अच्छा लगता है। सो इन चाइना अ वुमेन्स जिम मेंबरशिप इज 37 डेज नॉट 30, एंड इट्स ऑल बिकॉज ड्यूरिंग देयर पीरियड्स वुमेन ऑफन मिस वन वीक ऑफ वर्कआउट्स। इन ऑस्ट्रेलिया गर्ल्स डोनेट देयर हेयर टू मेक वीग्स फॉर चिल्ड्रन विथ कैंसर। Europe will require all mobile phones to be sold with replaceable and longer lasting batteries starting in 2027. China banned the display of wealth on the internet. Bloggers with 100 million followers disappeared overnight. Oy hoy, ye to matlab sab bilkul show off ke liye the yahan pe. A Polish streamer set a world record by raising more than $58 million to help children with cancer. The 17-year-old lioness survived blind for 5 years only because her daughters never abandoned her. इतनी अच्छी न्यूज़ जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, चाहे जानवरों के बारे में रहे, चाहे ह्यूमंस के बारे में रहे, चाहे हमारी अलग अलग बीमारियों के बारे में रहे, लेकिन लोग उन चीज़ों को लेके कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं और रिलेंटलेसली एफर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सल्यूट है इन सारे लोगों को। आप लोगों के मैसेजेस बैक टू बैक आते जा रहे हैं, कुछ लेट कमर्स हैं तो बिल्कुल आप पे फाइन लगाया जाएगा हाँ अभी। और जब बड़े प्यार से आप लोग पूछते हैं कि बिल्कुल जो सजा दोगी अश्विनी वो मंजूर है, हमेशा की तरह मैं वही कहती हूँ, एक तो मैं हूँ चटोरी और मिठोरी, बस कुछ अच्छे से यम्मी से डिश बना के यहाँ पे भेज दीजिए। ओके, इमोशन ऑफ द डे। नाउ नेक्स्ट ट्रैक जो मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स। सौतन फिल्म से सुना रही हूँ आप सभी को ये गीत। 1983 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। टुडे इज़ मोटिवेशनल मंडे, इससे प्यारा गीत और क्या हो सकता है। ये गीत मेरी तरफ से डेडिकेटेड आप सबके लिए।
0: अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर फॉर द इवनिंग शो। इमोशन ऑफ द डे। इमोशन

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला। गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत जात।

0: is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For 1 pound, you'll get 127.91 Indian rupee, 371.4 Pakistani rupee, 448.91 Sri Lankan rupee, 164.71 Bangladeshi taka, 86.13 Afghan afghani, 172.53 Kenyan shilling, 1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £96.67 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 54 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। एंड दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे तक शाम 7 से 10 रहता है आपका और हमारा साथ। भाई मंडे निकल गया, कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी, है ना, क्योंकि मंडे वाला दिन ही ऐसा होता है जो मानसिक तौर पे बड़ा ही हमें अत्याचारी दिन लगता है, पता नहीं क्यों। फॉर मी इट इज़ अ हैप्पी हैप्पी जोन बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर आई एक्चुअली एंजॉय सो मच। एक सुकून की जगह होती है एंड उस जगह में से दिस रेडियो प्लेस फॉर मी इज़ अ सुकून वाली जगह। एंड आई होप कि वेन यू आर लिसनिंग टू दिस शो आपको भी सुकून मिल रहा होगा। जी हाँ, लाइफ सुंदर होती है उसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें, रिश्ते सुंदर होते हैं उसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें, और जितने हम ऑनेस्टी से एक दूसरे के साथ में रहते हैं ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत बनती जाती है। आप लोगों में से कितने लोगों ने आज कहा कि बिकॉज बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस वजह से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, हम सभी जो हैं आज बड़े हैप्पी हैप्पी एंड खुश खुश मूड में हैं। रीज़न यही है कि ये जो ठंडी हवा जो है ना, इसने हम सबको कहा, मैं हूँ ना काहे परेशान होते हो। कल आई नो फिर से 31 डिग्री टेम्परेचर है, पर धीरे धीरे 20s में वापस जाने वाला है टेम्परेचर। अब है ऐसा टेम्परेचर तो है, एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशंस को और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि कैसा है ना, कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में अवेलेबल हैं, चाहे रिश्ते हों, चीज़ें हैं, नौकरी है, पैसा है, उन्हें एक्सेप्ट करके हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास में इतनी तो चीज़ें हैं, कई लोगों के पास में शायद ये भी नहीं है। नज़रिया बहुत बहुत क्रूशल है हम सभी के लिए। हम जिस तरीके से जिस चीज़ की तरफ देखते हैं वो हमारे लिए मायने रखता है। एंड डू यू नो कि हमारा ह्यूमन माइंड जो है हमें नेगेटिविटी की तरफ ही पहले ज़्यादा टर्न करता है। जब भी कोई किसी से पूछे कि क्या, तो लोग बोलते हैं कि क्या, क्यों पूछ लिया, ऐसा क्या क्या क्या बोला, ऐसे यू नो एनीथिंग, इट शुड बी लाइक नॉर्मली भी इंसान आपसे बात कर सकता है। बट आई डोंट नो, समवेयर आई फील कि लोगों में ना एक अजीब सी रूडनेस भी आ गई है एंड एक अग्रेशन भी आ गया है, तो उस चीज़ को ना धीरे धीरे हमें कम करते चलना चाहिए। एटलीस्ट हम और हमारे आसपास के लोग भी उतना कम कर देना तो भी काफ़ी शायद बैलेंस्ड लाइफ बन जाएगी। इस आवर का आखिरी गीत तो नहीं है अभी, और भी हमारे पास में कुछ है आपको सुनाने के लिए, तो ज़रूर सुनाएंगे। आखिरी गीत सुना दूँ आप लोगों को, चलिए देखते हैं।
0: Non-stop classics. Classics. Leica Gold. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Leica
3: Gold. Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
4: 25? Seriously?
3: Sounds like Ojo time.
4: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
3: Sorry about the wait, how can I help?
4: You can help me celebrate. I won!
5: Feel the fun, Play Ojo.
6: First deposit only, most wins are instant. 18 plus, gamble aware, T's and C's apply. The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Lyco Radio Network.
7: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
8: साउथहॉल ट्रेवल at all protected.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: भाइयों बहनों, खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में। इंडियाज फेमस छोले भटूरे, अब मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड, गैंसू, इल्फर्ड, IG2-6HA। बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
12: Download the Lyco Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Across Greater London, this is Lyco Gold, 10:35 a.m., DAB and online, a part of the Lyco Radio Network.
13: The top stories this hour. Counter-terror police have taken over questioning a 28-year-old man suspected of murdering ex-Conservative Minister Anne Widdecombe last week. The Home Secretary's confirmed the suspect wasn't known to the Anti-Extremism Prevent Programme. These neighbours in Rotherham saw him being detained.
14: Police came outside, undercovers, went in, had a few guns and arrested him, yeah, took him away, and then they waited all night, seized his car.
15: Forensics come in with all the white suits on, cornered it all off. Tape across, and then a truck came later on and towed away the car.
13: Reform UK leader Nigel Farage has also accepted Shabana Mahmood's offer of a meeting about politician security. The government's changing the law so it can deport a Rochdale grooming gang leader who arrived in Britain more than 50 years ago. Pakistan still needs to allow Shabir Ahmed in, something it's indicated it won't do. Three people have been found dead inside a family home in County Antrim. The Police Service of Northern Ireland says there's no wider risk to the public after this morning's discovery in Ballymena. Andy Burnham can no longer be challenged in the Labour leadership contest. No other MP can get support from a fifth of their colleagues after the former Greater Manchester Mayor received 349 nominations. England goalkeeper Jordan Pickford says they can't get distracted with plans to stop Lionel Messi ahead of their World Cup semi-final against Argentina. The teams meet on Wednesday night in Atlanta for a place in Sunday's final against either France or Spain. It'll be the first time England have come up against Messi. Pickford can't wait for the challenge.
16: Great to be able to finally come up against him for so long and watching him as a kid. And we all know how good Messi is, but we also know how good Argentina is. So can't just solely rely on Messi. We've got to focus on the other strengths as well and the other weaknesses we can take advantage of.
13: And Team England will be without three-time Olympic gymnastics champion Max Whitlock at the Commonwealth Games in Glasgow. He suffered a hand injury. From Sky News, I'm Cam Hall.
12: This is Lyco Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
17: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: हल्के फुल्के बादल, हल्की फुल्की हवा, 15 डिग्री आज रात लंदन का टेम्परेचर, कल 31 डिग्री मैक्सिमम, 16 मिनिमम सनी इंटरवल्स. मैनचेस्टर में बिल्कुल आज आसमान क्लियर है, हल्की फुल्की हवा है, 12 डिग्री टेम्परेचर है, कल 28 मैक्सिमम, 14 मिनिमम सनी होगा वेदर.
17: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Ashwini.
1: ओह क्या बात है, थर्ड आवर और आप और हम बढ़ते चले जा रहे हैं आगे इस म्यूजिकल जर्नी में. ये हमारा आखिरी घंटा है, दो फैंटास्टिक म्यूजिकल ट्रैक्स आप लोगों के लिए लाइंड अप है.
12: Like a gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
7: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
18: TravelHub.
7: At all protected.
12: Leica.
19: Ashwini in for Anisa Nasir.
20: Leica.

0: which was released in 1991, Kabhi Main Kahoon, fantastic track. Uske baad mein, the other one was Naseeb, which was released in 1981, us film se, Mohammad Rafi ki awaaz mein. Ye jo bhi music chal raha hai na, ye mujhe bada achha lagta hai. आई नो आप में से हर एक इंसान जो भी हमें मैसेजेस करते हैं, आप सभी कहते हैं ये शोले वाला जो तुमने बैकग्राउंड म्यूजिक लिया ना, नाउ दिस थिंग, ओ माय गॉड, दिस इज नॉस्टैल्जिक ना. हम सभी ने जब भी शोले देखी हैं, वो शोले देखने के बाद जो है हमें कुछ तो एक अलग सी फीलिंग है विद, स्पेशली विद द सॉन्ग्स, जिस तरीके की स्टोरी लाइन उसकी रही है ना. सो अगला गीत जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में, उत्सव फिल्म से. सोचिए सोचिए कौन सा गीत होगा.
1: Brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपये 50 पैसे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज़ एंड सीज़ अप्लाई.
2: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 37 मिनट्स पास्ट 9। बहुत ही मेलोडियस ट्रैक आपने और हमने सुना याराना फिल्म से, याराना विच वाज रिलीज्ड 1981। उस फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, ओए होए, अमिताभ बच्चन की ये फिल्म एंड नीतू सिंह इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो एंड अमजद खान, करेक्ट? मतलब दोस्ती पे ये फिल्म थी याराना। ओके, तो लास्ट ट्रैक है या नहीं है? नहीं नहीं, सिर्फ एक गाना क्यों, आपको दो गाने हम सुनाने वाले हैं, उसमें से एक होगी कव्वाली, जी हाँ, और उसके बाद होगा लास्ट ट्रैक।
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
7: 4 beers, please, garçon!
6: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold. Currency update. The perfect soundtrack for a British summer heatwave. For India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 127.9 Indian rupee, 371.08 Pakistani rupee, 448.59 Sri Lankan rupee, 164.58 Bangladeshi taka, 86.07 Afghan Afghani, 172.41 Kenyan shilling, and 1.33 US dollars.
8: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. LEICA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £96.46 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 41 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। बिल्कुल टाइम फॉर मी टू से टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, लेकिन उसके पहले गजल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली। बरसात की रात से ये इश्क इश्क है, ओ माई गॉड, अमेजिंग। मन्ना डे एंड मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये कव्वाली आप सुनेंगे, और आखिरी गीत होगा आशा भोसले भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में, एतबार फिल्म से किसी नज़र को, अनदर मेलोडियस ट्रैक। कल होगा ट्यूसडे तो हम साथ मिलकर मनाएंगे टेरिफिक ट्यूसडे। गोल्ड नाइट ओवरनाइट सर्विस है, जरूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। आप लोगों के लिए बहुत सारी वेरिएशन है रेडियो की गीतों की सुनने के लिए। एंड हमेशा की तरह यही कहेंगे भाई प्यार दो प्यार लो, जिंदगी खूबसूरत है उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए लगता है, आई एम श्योर आप लोग कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करते हैं। भाई हम प्रेजेंटर्स हैं बिल्कुल आप लोगों के लिए, मनोरंजन के लिए यहाँ पे प्रोग्राम आप लोगों के पेश करते हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार लाड़ दुलार मिलता है, इसलिए देखो ना कितनी जल्दी मुझे मैसेजेस, गुड नाइट के मैसेजेस भेजना शुरू करना पड़ता है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड वेदर कल फिर से थोड़ा गर्म होने वाला है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। एंड बस सब खुश रहें जिंदगी में, ख्याल रखें आसपास का भी। लेट्स बी ह्यूमन टू ऑल द पीपल अराउंड अस। ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।
0: ये है लाइका गोल्ड।
8: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: लाइका गोल्ड
1: इल्फर्ड तैयार हो जाइए। वेंसडे 15 जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला इल्फर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका। साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ। बीकानेर वाला 513519 क्रैनबुक रोड गैंडसिल इल्फर्ड IG2 6HA।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
1: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
5: साफो ट्रेवल at all protected.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: She can't hear you, but danger always hears her coming.
10: Sab dar bhaag jaye.
9: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and

0: लाइका गोल्ड।
1: आपके सामने एक रेड बटन है,
2: दबा दिया।
1: नहीं दबाना था।
3: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
3: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
3: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमाज नाउ।
6: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता।

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
5: You know how fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocenter.org.
7: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath, sirf Laika Gold par.

0: This is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साफो ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
3: आपके सामने एक रेड बटन है,
4: दबा दिया।
3: नहीं दबाना।
5: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
5: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
5: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमाज नाउ।
8: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
12: Four beers, please, garçon.
11: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
13: Packed for the trip? Gifts? Passport?
14: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
13: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
14: Simzy?
13: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
15: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.

0: Non-stop classics. Like a Gold. London.
1: Evening. How's your night shift going? Just a quick check-in from Acorn Insurance, the taxi specialists. We've been by your side for over 40 years, helping new drivers earn a no-claims bonus from day one and accepting up to 9 years no-claims from veteran cabbies. That's why we're the largest taxi insurance specialist in the UK. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Bye for now. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
2: Ilford, तैयार हो जाइए. Wednesday 15th July, शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला Ilford और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका. साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ. बीकानेर वाला 513519 क्रैनबुक रोड, गैंडसिल, Ilford, IG2 6HA.
3: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
2: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
6: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: कहां से लाई हो जान।